मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्स और FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है और इस सभा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री

0: हिंदू अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर और FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना।

मीरा से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका तो अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा मोल लिया। जब भी कुछ खरीदा जाता है तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है, तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में। तो मीरा का

प्रभु भक्ति की ये धुन लगी हुई है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना।

श्रोताओं, इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में आपने सुने जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, शर्मा बंधु, रविंद्र जैन और सुहासिनी के स्वर। अब कार्यक्रम संपन्न होता है।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया।

0: भूपेंद्र सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए चिंतन में गुरु शरणानंद के विचार।
1: सुदामा चरित्र अपूर्व आख्यान है, दो सखाओं का वर्णन है। एक श्रीपति है, एक वरातक पति भी नहीं है। एक महल में निवास करता है, दूसरे को झोपड़ी भी नहीं उपलब्ध है। अथच दोनों सखा हैं, दोनों की समाना ख्याति है। उपनिषद में आया है द्वासुपर्णा सहजा सखाया, समान वृक्षम परिशश्व जाते, तयोरेकम पिप्पलम स्वादुवत्ती, अनश्नन अन्य अभिचाकशीति। जीवात्मा परमात्मा सखा है, अविद्या उपाधि से उपहित परम तत्व जीव है, माया उपाधि से उपहित तत्व ईश्वर है। ईश्वर अभोक्ता है, अकर्ता है, ऊर्ध्व दृष्टि वाला है। संसार वृक्ष के फल का उपभोग जीव करता है, जीव में कर्तापन का अभिमान है, इसीलिए संसार वृक्ष के पुण्यापुण्य का फल उसे ग्रहण करना पड़ता है। दोनों में से माया उपाधि और अविद्या उपाधि का निवारण कर दिया।

0: जाए दोनों अभिन्न है। जीव कहता है ईश्वर से, प्रभु मैं अपने परिच्छिन्नत्व का, अपने जीवत्व का, अपने सुख दुखित्व का त्याग कर दूं, आप अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता का, सर्वज्ञता का, सर्व सामर्थ्य का त्याग कर दो। भाग त्याग लक्षणा के द्वारा हम एक हैं। श्रीमद् भागवत जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का संबंध स्थापित कराती है। संबंध सदा दो में होता है, जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का निरूपण कराती है। श्री सुदामा जी महाराज पोरबंदर के निवासी ब्राह्मण देवता है, भगवान के सखा हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी अपरिग्रही स्वभाव के होने के कारण श्री सुदामा जी के पास ऐश्वर्य का, लौकिक ऐश्वर्य का अभाव है। श्री सुदामा जी का दृढ़ विचार है ये ब्राह्मण की काया दिव्य है, अतिश्रेष्ठ है, अल्प कामाय नेष्यते। इसका प्रयोग अल्प काम के लिए नहीं करना चाहिए, सामान्य लाभ के लिए हेतु इस शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है। ब्राह्मण का विग्रह तप के लिए है, ब्राह्मण का शरीर त्याग के लिए है, ब्राह्मण का शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए है। आत्म कल्याण करते हुए हर प्राणी में ईश्वर दर्शन करते हुए जीव के कल्याण के लिए है। ब्राह्मण को अति संपत्ति नहीं स्वीकार करनी है, जिसे तपस्या करनी है। इसीलिए श्री सुदामा जी के पास संपत्ति का सर्वथा अभाव है। सुदामा जी महाराज त्रिकाल संध्या करते हैं, श्री कृष्ण के साथ सखा संबंध है, भगवान का सखा रूप में ध्यान करते हैं। कितने कृपालु हैं, मेरे जैसे दीन को भी अपना सखा मानते हैं। गुरुकुल वास के समय श्री कृष्ण हमारा कितना ख्याल करते थे। जब भी कोई गुरु आश्रम की सेवा होती थी तो श्री कृष्ण हमारे साथ होते थे। सुदामा दुर्बल ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ है हूं, मेरे शरीर में सामर्थ्य है, सुदामा को विशेष कष्ट न होने पाए।
1: अभी आप सुन रहे थे गुरु शरणानंद के विचार, कार्यक्रम चिंतन में।

श्रोताओ, आप ये प्रसारण सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर, और आपने ट्यून किया है FM 102 और FM 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz के साथ साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। आइए श्रोताओ, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले खास कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। इस सभा में सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज चर्चा होगी विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग कारण लक्षण उपचार, और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजमल मीणा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। फिल्म संगीत इस सभा में आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 और सुबह 9:10 पर। बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन लेकर हाजिर होंगे सुबह 9:30 पर। आज का ये कार्यक्रम थीम आधारित कार्यक्रम होगा और आज की थीम होगी लड़का लड़की एक समान, और इसी बीच चर्चा होगी मासूम बच्चों को क्रोध से बचाने का

0: अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस विषय पर, साथ ही कैरी का अचार कैसे बनाएं इस विषय पर भी बातचीत होगी। और उसके बाद श्रोता लगातार जुड़े रहेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ। और दोपहर 12 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम उमंग के बाद आप पुनः आनंद लेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का। और शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का संवाद रहेगा, अनुकूल समय पर प्रतिकूलता के लिए तैयार रहें। साथ ही युवा दिल से इस सेगमेंट में आज बात होगी, योग से स्वास्थ्य सुरक्षा इस विषय पर। और नॉलेज कॉर्नर में आज होगा इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंस चिल्ड्रन विक्टिम और अग्रेशन, ये एक विषय रहेगा। मॉरिशस के हिंदी कथा साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार अभिमन्यु अनंत, ये विषय पर भी बातचीत होगी। और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन, इन पर भी बातचीत की जाएगी। बात करें किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल की, तो वो प्रसारित होगा शाम 7 बजे। आज चर्चा होगी आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भेंट वार्ता खेती को लाभकारी बनाने हेतु नवाचार इस विषय पर होगी। वार्ताकार होंगे मेघराज लोधा। और हाइड्रोफोनिक खेती पर भी जानकारी होगी किसान भाइयों के लिए। माटी के स्वर, ये कार्यक्रम शाम 7:30 बजे। चित्रपट संगीत रात 8 बजे लेकर हाजिर होंगे। और बातों बातों में ये भी होगा फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम रात 9 बजे। और रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी संख्या 4 आपको सुनवाई जाएगी। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, जुड़े रहें हमारे साथ। फिलहाल रुख करते हैं दिल्ली केंद्र का, समय हो चुका है संस्कृत में समाचारों का।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77,00,000 आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मासपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2,00,000 ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,00,000 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनं, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य

0: नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज़-वर्यः भारतदेशस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाहः पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षीविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नमस्कार कोटा। आप घर के कामों में व्यस्त हो, ऑफिस की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने दिन की नई शुरुआत कर रहे हो, आप अपना काम करते रहिए और साथ बनाए रखिए हमारे साथ इस सुहानी मॉर्निंग प्रोग्राम में। सुबह की ताजगी, मधुर संगीत और मन को छू लेने वाली बातें लेकर हम हैं आपके साथ, ताकि आपका हर पल मुस्कुराहटों से भर सके। तो काम चलता रहे और मनोरंजन भी, बस रेडियो का साथ यूं ही बनाए रखिए। और बार बार रेडियो से नज़दीकियों का अनुरोध कर रही है ये आपकी साथी सीमा, कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं हमारी और पेड़ पौधों की। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ, या तो मैं आपको पेड़ पौधे लगाने की कहूंगी, जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं, या फिर पेड़ पौधों की उपयोगिता या उनका महत्व आपको बताऊंगी, जो कि आप भली भांति जानते समझते हैं। पर आज जो बात है ना जनाब, वो है थोड़ी हटके। तो बात को यानी पेड़ पौधों की बात को जोड़ते हैं मानव यानी हमारे व्यवहार से। कैसे, सुनिए। जैसे एक पौधा है छोटा सा,

घर के आंगन में या घर के किसी गमले में लगा हुआ। और दूसरी तरफ बात करेंगे जंगल की, ठीक है। तो जब घर के छोटे से पौधे का हम बात करें तो हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, टाइम टाइम से पानी देना पड़ता है, ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं, और अगर पानी की कमी रह गई तो वो सूख जाएगा। और अगर आप गलती से या किसी काम से 4-5 दिन के लिए घर से बाहर निकल गए, आउट ऑफ टाउन, तो वो पौधा या तो मुरझा जाएगा या फिर जल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल की बात करें तो जंगल के पेड़ खड़े रहते हैं अपनी ही मस्ती में, पानी का बस एक ही साधन बारिश, आए तो ठीक ना आए तो भी ठीक, मौसम से पहले आ जाए तो ठीक ना आए तो भी ठीक, फिर भी फूल खिले दिखते हैं। और विशेष कर तेज गर्मी या भीषण गर्मी में अभी आप देख रहे होंगे कि गुलमोहर के लाल फूल, पलाश के केसरिया फूल और अमलतास के पीले फूलों से पेड़ लदे हुए नजर आते हैं। हरियाली मेंटेन रहती है, जंगल सब कुछ अपने आप ही कर लेता है। और साथियों, यहीं से बात में है अब ट्विस्ट, क्या है और सुनिए और गौर से सुनिए कि यहाँ हमें डिसाइड करना होता है कि हमें जिंदगी में किस तरह का पौधा बनना है। वैसा जो छोटा पौधा है जिसकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है, मेरी बर्थडे किसी को याद नहीं रहती है, मेरा किसी को ध्यान नहीं है, मुझे कोई याद नहीं करता है, मुझे कोई अटेंशन नहीं देता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे तो आप जीता जागता स्ट्रेस बन रहे हो किसी और की जिंदगी में। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि ऐसा हमारा बर्ताव किसी और की जिंदगी को स्ट्रेस भरा बना रहा है, तनावपूर्ण कर रहा है। और यहाँ बात सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की या सिर्फ पति पत्नी की नहीं कर रहे हैं, दो बहनों में भी ऐसा होता है, माँ बेटे में, माँ बेटी में, पिता और बेटे में, भाई भाई में और बहनों में ये चीज हो सकती है, तनाव हो सकता है यदि आप चाहें कि अटेंशन सिर्फ मुझे ही मिले। किसी भी रिश्ते में आपको उस पौधे जैसा बनना है जिसकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा मानव व्यवहार जीता जागता तनाव होता है, जीता जागता स्ट्रेस होता है अपने आसपास के लोगों के लिए। या फिर एक जंगल के जैसा पेड़ बने जो किसी भी परिस्थिति में, खुद का सपोर्ट सिस्टम तो होता ही है, अपने आसपास के लोगों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ा रहता है। आपको उसका एक्स्ट्रा ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ बेसिक नीड्स जो हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो सोचना इस बारे में है, और जरूर सोचना है, और सोचने के बाद हो सके तो ऐसा बनना है आपको एज ए ह्यूमन, आसपास के लोगों के लिए स्ट्रेस हम न बने, सेल्फ सफिशिएंट हों। तो जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा कि बात कुछ हटके है, तो लगी ना आपको ये बात कुछ हटके, तो थोड़ा सोचिए, बात पेड़ पौधों की भी है, हमारे व्यवहार की भी है, हमारे आसपास के लोगों की है, उनके मन की है, उनका दिल नहीं दुखे इससे भी जुड़ी है ये बात। तो थोड़ा सोचिए, और फिलहाल इस सोच के साथ साथ आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं। तो आपका जो ये सोचने वाला, जो विचार करने वाला सफर है, वो थोड़ा मधुर हो जाएगा।

0: जारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता सुन रहे हैं अपने दिलों की सुरीली धड़कन आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल।

जी हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये एक खेल होता है, आप सभी जानते हैं और बचपन में सभी ने खेला भी है। अब जब खेल की बात हो रही है तो खेलने की तो खैर कोई उम्र होती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम कार्यक्रम में थोड़ा रुख बदलते हैं और बच्चों की बात करते हैं। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि बच्चे स्नेह चाहते हैं और उनके विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे मिट्टी की उस कोमल दीपक की तरह होते हैं जिन्हें आकार देने के लिए प्रेम, स्नेह और अपनापन सबसे ज्यादा चाहिए होता है। स्नेह केवल एक भावना नहीं, बल्कि वो आधार है जिस पर बच्चों का व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और भावनात्मक विकास खड़ा होता है। जिस बच्चे को परिवार से प्यार, सम्मान और सुरक्षा का एहसास मिलता है, वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और सकारात्मकता के साथ कर सकता है। माता-पिता का एक स्नेहिल स्पर्श, प्रोत्साहन भरे कुछ शब्द और थोड़ा सा समय बच्चे के मन में विश्वास और खुशी के अनगिनत दीप जला सकता है। स्नेह से वंचित बच्चा भीतर ही भीतर असुरक्षित, संकोची और अकेला महसूस करता है, जबकि प्रेम से भरा वातावरण उसे संवेदनशील, रचनात्मक और जिम्मेदार बनाता है। बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा, खिलौने या सुविधाएं ही नहीं देनी चाहिए होती है, बल्कि उन्हें ये विश्वास भी हमें ही देना होता है कि उनके अपने हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। इसलिए बच्चों को दिया गया स्नेह, प्रेम, लाड़, प्यार, दुलार उनके वर्तमान को खुशहाल और भविष्य को उज्जवल बनाने की सबसे अनमोल पूंजी है। प्रेम और अपनापन ही वो शक्ति है जो एक बच्चे को सफल ही नहीं, बल्कि एक अच्छा और संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्तित्व वाला इंसान बनाते हैं। और ये सारी बातें हमने इसलिए कही क्योंकि

0: तो इसलिए श्रोताओं, आज के इस डिजिटल दौर में बच्चों को मोबाइल और टीवी से पूरी तरह दूर रखना तो असंभव है, लेकिन उनका संतुलित उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें पार्क, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें, परिवार के साथ बातचीत, किताबें पढ़ने की आदत और खुले मैदान में खेलना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। इस बात की उपयोगिता बच्चों को समय समय पर दें, और बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं, इसलिए स्क्रीन से ज़्यादा समय रिश्तों और गतिविधियों को दीजिए। यही उनके स्वास्थ्य और अच्छे स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की मजबूत नींव बनता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, प्रोग्राम है नमस्कार कोटा।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना।

0: बन घट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

देवता अपनी कितनी तेजी दिखाते हैं वो तो उन्हीं पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी गर्मी से अभी फिलहाल राहत है। और शहर की गतिविधियों के चलते जो लोग पूजा पाठ करने में या भागवत कथा सुनने में इच्छा रखते हैं, उन्हें बता दें कि महावीर नगर प्रथम नीलकंठ महादेव मंदिर जो है, महावीर नगर प्रथम में नीलकंठ महादेव मंदिर में आज दोपहर 3 बजे से भागवत कथा सुनाई जाएगी। तो जो भी इस भागवत कथा का आनंद लेना चाहते हैं पहुंचे 3 बजे महादेव मंदिर में। और शिव पुराण कथा का वाचन होगा जवाहर नगर स्थित श्री राम मंदिर में दोपहर 1 बजे से। तो अब आपको भागवत कथा सुननी है, शिव महापुराण कथा सुननी है, तो जगह हमने आपको बता दी है, वहां पहुंचे और कथा सुने। और श्रोताओं, ये प्रोग्राम है नमस्कार कोटा। इस कार्यक्रम में बात होती है ज्ञान की, जानकारी की, मनोरंजन की और कला की। और इसी क्रम में कला जगत की, फिल्म जगत की एक बेहतरीन अदाकारा, फिल्म जगत की बहुत ही खूबसूरत, गुणी, टैलेंटेड अभिनेत्री नूतन जी की बात करते हैं। आज उनकी जयंती है। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन 4 जून 1936 को उनका जन्म हुआ था। और नूतन हिंदी फिल्म सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, उनका जन्म आज ही की तारीख को सन 1936 को हुआ था। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री शोभना समर्थ की पुत्री थी, यानी उनकी माता का नाम शोभना समर्थ था। नूतन जी ने अपने सहज अभिनय, सादगी और भावपूर्ण अभिव्यक्ति से दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने फिल्म सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन, सरस्वती चंद्र और मैं तुलसी तेरे आंगन की, साथ ही साथ मेरी जंग जैसी अनेक यादगार फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए, जो लंबे समय तक या यूं कहें ताउम्र एक रिकॉर्ड बन चुका है। नूतन जी ने गंभीर, संवेदनशील और सशक्त महिला पात्रों को जीवंत रूप देकर भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। और 21 फरवरी सन 1991 को उनका निधन हो गया। वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से अलविदा कह गए, लेकिन उनकी अभिनय कला आज भी हिंदी फिल्म जगत की अमूल्य धरोहर है। और उनकी याद में बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनवाते हैं।

और लीजिए श्रोताओं, अब आपको इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बता देते हैं कोटा शहर का तापमान। अधिकतम 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गर्मी अभी भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन श्रोताओं, आपको बताएं कि आज सुबह जब हम स्टूडियो के लिए रवाना हुए घर से, यानी मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर बात कर रही हूं, तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, और उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई थी। तो अभी हाल फिलहाल सुबह, क्योंकि वैसे ही ठंडी होती है और बारिश ने उसमें चार चांद लगा दिए हैं, तो आगे दिन भर में माहौल कैसा रहता है, मौसम कैसा रहता है, सूरज देव

तो श्रोताओं, इन जानकारियों और बातों के साथ अब कार्यक्रम नमस्कार कोटा को समाप्त करने का समय हो चुका है और चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे, अपना खूब ख्याल रखें। मौसम बदल रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने खान पान का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें, पेड़ पौधे लगाएं। अगर पेड़ पौधे आपके घर के आसपास लगे हुए हैं तो उनकी देखभाल करें, समय समय पर उन्हें पानी दें, घर में पानी बचाएं, बिजली बचाएं और घर से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो सकुशल घर लौट आएं। इन सभी यातायात के नियमों का पालन करें और अपने सफर को सुहाना बनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। और श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा जी ने और प्रस्तुति राजेश महावर जी की। अब सीमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार कोटा।

श्रोता अभी सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है और हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप और FM 102 और FM 103.6 MHz के साथ साथ मीडियम वेव 212.31 मीटर पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। समय है फिल्म संगीत का और आज आपके लिए कुछ युगल गीत चुनकर लाए हैं। चलिए पहला युगल गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अनजाना से। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और बोल आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और जदाओं ये आपके रेडियो सेट पर आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की, इनका साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने, गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने, फिल्म का नाम कारवां।

श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर आप आनंद ले रहे हैं युगल गीतों का। श्रोताओं, अगला एक और खूबसूरत गीत आपके लिए हमने क्यों कर रखा है, उससे पहले

लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज प्रातः 8:15 से सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजमल मीणा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और चर्चा होगी विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग के कारण लक्षण और उपचार इस विषय पर। यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्रसारण के दौरान यानी 8:15 से 9:00 के बीच आप हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें 2941142, ये है हमारे स्टूडियो का नंबर और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 0744 जरूर लगाएं। तो सुनना ना भूलिएगा 8:15 से 9:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और अब फिर से बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर। वापस ये है फिल्म का नाम, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर

0: हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पिघलता आसमां, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम। किशोर कुमार और अलका याग्निक के युगल स्वर हैं। गीत लिखा माया गोविंद ने और धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने।

0: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
0: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
0: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई है।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज की चर्चा का विषय आपको बताते हैं, विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग के कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर राजमल मीणा जी। यदि आप इस विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर प्रसारण के दौरान फोन करें। स्टूडियो का नंबर है 2941142 और उससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 जरूर लगाएं। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 0744 कोटा का एसटीडी कोड और उसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करें 2941142। तो जरूर सुनिएगा और जुड़िएगा कार्यक्रम से। सुबह 8:15 से 9 बजे तक इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। और अब युगल गीतों में अगले गीत की बारी। फिल्म का नाम आपको बताते हैं, आनंद आश्रम। किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर हैं। गीत है इंदिवर का और संगीत श्यामल मित्रा का।

0: तो श्रोताओं, फिल्म आनंद आश्रम के इस युगल गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। अभी आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक हमारे दिल्ली केंद्र से, और आपको याद दिलाना चाहेंगे 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। अभी समय है समाचार प्रभात का, आइए आप और हम रुख करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73

0: वे पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
1: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। JEM से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि JEM की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं JEM से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
1: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजना पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50

0: से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेज अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ श्रोता हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
3: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 88 शक्तिनगर दशहरा मैदान कोटा।
4: कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा। कोटा आई हॉस्पिटल जहां बिना दर्द बिना टांके और बिना पट्टी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन और मुड़ने वाले लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। कोटा आई हॉस्पिटल के रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित पंजाबी द्वारा रेटिना से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार और विश्व की सर्वोत्तम एलकॉन कॉन्स्टिलेशन मशीन द्वारा सर्जरी की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल में हाड़ौती की प्रथम और विश्व की सर्वश्रेष्ठ एलकॉन वेव लाइट EX500 लेसिक लेजर मशीन द्वारा चश्मा हटाने की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल राजस्थान राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नेत्र चिकित्सा सुविधा के बिल पुनर्भरण हेतु अनुमोदित है। कोटा आई हॉस्पिटल जहां एक छत के नीचे आँखों की संपूर्ण जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध। 1987 से आपकी सेवा में समर्पित अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त संस्थान कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा।
2: श्रोताओं स्वागत करते हैं आप सभी का प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, हर गुरुवार को हम लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए और आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ, आपकी साथी सीमा। आज इस कार्यक्रम में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, एक ऐसा विषय जो आज के समय में तेजी से चिंता का कारण बन रहा है, विद्यार्थियों एवं युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग के कारण लक्षण और उपचार। ये है आज का विषय। विषय आपको एक बार फिर से बता देते हैं, विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग। श्रोताओ आज की इस भागदौड़ भरी और डिजिटल लाइफ में जीवन शैली की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, परीक्षा का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, करियर की चिंता और पारिवारिक अपेक्षाएं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रही है। कई बार तो तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं समय रहते पहचान में नहीं आती हैं और गंभीर रूप ले लेती हैं। जीवन के इन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने और इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कोटा के जाने माने मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजमल मीणा जी। तो श्रोताओं आपकी तरफ से और पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद
0: जी। और अब हम एक बार श्रोताओं को हमारे स्टूडियो का नंबर बता देते हैं। श्रोताओं, प्रोग्राम हेलो डॉक्टर शुरू हो चुका है, ये आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे तक। इस विषय से जुड़ी कोई भी समस्या का निदान अगर आप चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें और सीधे डॉक्टर राजमल मीणा से बात करें। स्टूडियो का नंबर है 2941142 और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड जरूर लगाएं 07

0: बात करें। स्टूडियो का नंबर है 2941142 और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड जरूर लगाएं 0744। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि विषय को ध्यान से सुने, चर्चा को ध्यान से सुने और विषय से जुड़ा अगर सवाल करेंगे तो प्रोग्राम सहजता से आगे बढ़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं विषय की। विषय एक बार फिर से बता देते हैं, विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा लोग पहचाने कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है।
0: जी,
1: सीधी सरल भाषा में बात करें इसके बारे में तो कि हम सोचते कैसे हैं, हम लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं, सोसाइटी में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो अगर एप्रोप्रिएट है
0: जी
1: अदर पर्सन के अकॉर्डिंग, जो दूसरे लोग मोस्टली पॉपुलेशन जो जिस तरह से व्यवहार करती है, इंटरेक्ट करती है, सोचते हैं सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हाँ। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, इसके बारे में बात ये रहेगा हमारा।
0: जी जी जी,
1: आप एक बैलेंस तरीके सोच पा रहे हैं, अपने विचारों को समझ पा रहे हैं, भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो हम मान सकते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है।
0: जी जी जी। अच्छा, दैनिक जीवन पे इसका क्या महत्व है ये भी बताएं थोड़ा।
1: मानसिक स्वास्थ्य का दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सुबह से जब हम उठते हैं, रात को सोते हैं, और 24 घंटे का जो हमारा साइकिल होता है, आपका काम करने का रूटीन होता है
0: जी,
1: और आपका जो फैमिली लाइफ होता है, पारिवारिक जीवन, अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप अपने काम ढंग से नहीं कर पाएंगे
0: जी,
1: अपना जो दिनचर्या काम है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, सोशल लाइफ है वो ढंग से जी नहीं पाएंगे, पारिवारिक जीवन ढंग से बिता नहीं पाएंगे
0: जी, जी, जी।
1: उसे हमारी जो दिनचर्या डिस्टर्ब होगी पूरी
0: जी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिन की शुरुआत होने के साथ ही हमारे साथ भी शुरू हो जाता है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब का कहना, और अब एक बार फिर से आपको विषय बता देते हैं, विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग। इस विषय पर चर्चा शुरू हो चुकी है और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजमल मीणा जी। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज का हमारा विषय जो है हम केंद्रित कर रहे हैं विद्यार्थियों और युवाओं पर, तो युवाओं और विद्यार्थियों में मानसिक रोगों के बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है।
1: जिसे हमारा टॉपिक आपने बताया, युवा और विद्यार्थी
0: जी जी,
1: इनमें मानसिक रोग, इस जो उम्र होती है, स्टूडेंट लाइफ होती है, ये युवा अवस्था होती है, कारण तो ऐसे सैकड़ों हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य कारण है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको लेकर ज्यादातर जो पेशेंट है परेशान होते हैं या उनमें डेवलप होते हैं। मानसिक रोगों में या तो किसी के पारिवारिक हिस्ट्रियों पहले किसी को परिवार में, माता पिता में, या
0: जी, जी, जी।
1: जो ब्लड रिलेटेड है
0: हाँ।
1: उनमें किसी का मानसिक रोग हो तो उन बच्चों में मानसिक समस्या होने की संभावना रहती है।
0: ठीक है,
1: आगे बात करें तो मानसिक तनाव।
0: तनाव ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सभी के साथ है। जी जी डॉक्टर साहब,
1: आज के जो हमारे जीवन से लिए स्पीड से जो जिस तरह से आधुनिकरण हो रहा है, हम भाग रहे हैं तो हमारे काम को मैनेज नहीं कर पाते, तो मानसिक तनाव बढ़ता है। मानसिक तनाव बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या सेट नहीं कर पा रहे हो, वर्कलोड है आपके ऊपर ज्यादा है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई का लोड आ सकता है उनके ऊपर, स्ट्रेस आ सकता है, परिवार में आप हैं, आपके फैमिली लाइफ और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको आप अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे दोनों को तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी आपके को लॉस हो गया, आर्थिक लॉस हो सकता है, पारिवारिक किसी की डेथ हो सकती है, ऐसे मल्टीपल कारण है जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, तो वो भी मानसिक रोग होने का कारण होता है। आगे बात करें इनमें कारण में तो एक नशा,
0: हाँ।
1: नशा एक प्रमुख कारणों में आता है
0: जी जी जी,
1: जिसमें शराब, अफीम, गांजा, भांग, इनकी लत अलग से एक मानसिक रोग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन ये दूसरे मानसिक रोग उत्पन्न करने में भी कारगर होते हैं, इनका कारण होते हैं।
0: लत को एक रोग मान सकते हैं,
1: लत भी एक रोग है मैडम
0: जी जी जी।
1: लत किसी भी नशे की लत एक मानसिक रोग है, और उस लत के कारण दूसरे मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और भी बहुत से प्रकार के साइकोटिक डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। ये भी कारण हो जाता है
0: जी जी।

0: अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जैसे हम अगर अपने बचपन की बात करें तो बच्चा एक श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रही हैं?
1: मैं प्रेरणा से बोल रही हूँ, लाड़ता
0: से। एक बार नाम फिर से बताएं प्लीज। प्रेरणा जी, प्रेरणा जी एक बार फिर से स्वागत है, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? प्रेरणा जी, आपका जो सवाल है ठीक से सुनाई दे। एक तो आप थोड़ा सा धीरे रुक के बात करें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक बार फिर से पूछें, आपको कष्ट तो दे रहे हैं।
1: जैसे मेरे बच्चे को, 15 साल का बच्चा है मेरे,
0: हाँ,
1: दोहरे आते हैं।
0: अच्छा,
1: क्या कारण है और क्या किस तरह से इसका इलाज हो सकता है और कितने साल में इसकी बीमारी खत्म हो सकती है?
0: अच्छा अच्छा, सुने डॉक्टर साहब,
1: या फिर क्या चीज है
0: डॉक्टर साहब?
2: देखिए मैडम, जो दोहरे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया हो, उन्हें कुछ जांचें करवाई हो, जैसे ब्रेन का स्कैन होता है, MRI, EEG, आपने दिखाया है किसी डॉक्टर को बच्चे को?
1: विनोद पंकज जी अपने डॉक्टर, आपने सैटेलाइट के अंदर उनको दिखाया है,
2: बच्चों के डॉक्टर है।
1: EEG करवाई है, MIR करवाई थी उन्होंने, जो उसमें एक धब्बा बताया था।
2: धब्बा बताया, वो धब्बे के क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो उसके बच्चे के, कोई नसें ब्लॉक होगी ब्रेन में, तो उसके कारण बहुत सी बार दोहरे पड़ जाते हैं। इसका इलाज मैडम दवाइयां हैं, जो बीमारी का कारण है जो आपने बताया, जैसे कि MRI डॉक्टर साहब ने आपको धब्बा बताया है, तो धब्बा किस कारण से, उसको आगे ठीक करने के लिए दवाइयां दी डॉक्टर साहब ने। आपने बताया वो क्या दोहरा रोकने की दवा है जो आपने बताई, भी सोडियम वाल्प्रेट जो,
1: उसके बाद अपन दवा देने के बाद उसके दोहरे रास्ते क्यों आते
2: हैं? मैडम हो सकता है हम समय से दवा नहीं दे रहे हूँ, उनका टाइम में चूक हो गई हो हमारे।
1: नहीं नहीं, सही नहीं चुकी मैं, हमेशा उसको जो टाइम बता रखा उस टाइम से दवाई दे रही हूँ बच्चे को।
2: अगर एक दवा देने के बाद दोहरा नहीं रुकता है तो आप जो चिकित्सक है उनसे आप दोबारा मिलिए, हो सकता है दवा चेंज करने की आवश्यकता हो, या बच्चे जैसे उम्र के साथ बड़े होते हैं, वेट भी बढ़ता है, तो उसमें क्या डोज भी चेंज करना पड़ता है फिर टाइम के हिसाब से। ये तो इसमें क्या होता है कि हर मरीज में अलग अलग मैडम ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, किसी में लंबा चल सकता है, किसी में कम चल सकता है, लेकिन ये दोहरे की बीमारियाँ होती है, इनमें इलाज लंबा ही चलता है, तो बिना चिकित्सक की सलाह के कभी दवा बंद नहीं करें इसमें। और अगर लगता है कि आपको ये जो दवा ले रहे हैं उससे आराम नहीं आ रहा है, या उसके खाने के बाद भी आपको दौरे पड़ रहे बच्चे को, तो दोबारा चिकित्सक से आप सलाह लें कि डॉक्टर साहब ये दवा लेने के बाद पहले से फ्रीक्वेंसी कम हुई उसकी या नहीं हुई, और या अभी भी दौरे महीने में एक दोबार आ जाते हैं, तो कुछ दवा चेंज कर देंगे डॉक्टर साहब, या उसमें ऐड कर देंगे पहले की दवा के साथ में कुछ नई दवा ऐड कर देते हैं बहुत सी बार, तो दोहरा जो आपकी समस्या है बच्चे की वो रुक जाएगी उसमें। खान पीन में तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ खाने से ये बीमारी होती है, या कुछ ऐसा अलग से खाना खिलाएंगे बीमारी रुक जाएगी। जो हेल्दी फूड है, जो रूटीन में जो घर में बनता है आप सब लोग खाते हो, बच्चे को खिलाइए, हेल्दी फूड दीजिए। बाकी डॉक्टर साहब ने जो सलाह बताई होगी दोहरे की बीमारी के बारे में कि दवा कैसे खिलानी है, किस टाइम पे खिलानी है, वो क्या सावधानी बरतनी है, तो आप दोबारा
1: 4 mg टाइम लग रही है इसको, फिर 15 साल का बच्चा ही है।
2: 15 साल का बच्चा है मैडम, बहुत सी बार इससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, उन्हें भी ऐसी समस्या हो जाती है, ये बीमारी उम्र देख के नहीं होती। तो उसका जो बच्चे का जो आपने बताया MRI में धब्बा है डॉक्टर साहब जैसे आपको बताया है, तो उससे संबंधित डॉक्टर साहब दवाई भी दी होगी, और आप चाहें तो दोबारा डॉक्टर साहब संपर्क करिए कि डॉक्टर साहब भी दवा चल रही है, इसके बाद भी रिलीफ नहीं है तो कुछ और दवाइयां उसमें ऐड कर देंगे डॉक्टर साहब।
0: हेलो प्रेरणा जी, हाँ आप संतुष्ट हुए डॉक्टर साहब से बात करके? हाँ, इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप ये प्रोग्राम अंत तक सुने, शायद कोई ऐसी चीज हो जो आपके बच्चे के इलाज में।
1: दूसरा मोबाइल में FM चला रखा है, वही मैं हमेशा FM सुनती हूँ, और मैडम डॉक्टर की बात सुनती हूँ।
0: अच्छा अच्छा जी जी, बहुत अच्छी बात है, और अगर हम इस तरह के प्रोग्राम सुन

0: होते हैं तो हमारी जानकारी ही बढ़ती है, तो वो अच्छा होता है। तो आप इस
1: प्रोग्राम की कई बार बात भी हुई मैडम से डॉक्टर से,
0: जी जी जी जी तो हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए, और आप एक दो डॉक्टर से और कंसल्ट करें या उन्हीं डॉक्टर साहब को आप दोबारा दिखाएं जाके। चिंता ना करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ज़रूर ठीक हो जाएगा। और प्रोग्राम में आपने फ़ोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर। हम बात कर रहे थे आजकल, जैसे बात मैंने की थी अपने बचपन की कि हमारे टाइम में स्कूल जाते थे बच्चे 4-5 साल के हो जाते थे, उसके बाद आजकल बहुत कम उम्र में बच्चे प्ले स्कूल हो गए, स्कूल से भी पहले प्ले स्कूल, तो और स्कूल और फिर उसके बाद जो क्लास बढ़ जाती है 8वीं 10वीं में आने के बाद बच्चा घर ही छोड़ देता है, बोर्डिंग स्कूल्स हो रहे हैं, और आगे फिर वो बच्चा 10वीं क्लास के बाद से ही वो घर से दूर करियर ओरिएंटेड। तो क्या ये एक मानसिक रोग का या एक तनाव का कारण है, या जैसे आपके पास बच्चे आते होंगे किस तरह की रहती है, आप थोड़ा बताएं ताकि हमारे श्रोताओं को भी सुन के अच्छा लगे। क्या हर व्यक्ति आपके पास जो आता है वो परेशान ही आता है, या कितने बच्चे ठीक हो जाते हैं, कितने कम टाइम में ठीक हो जाते हैं, या कईयों को, ये थोड़ा सा खुल के पूरा विस्तार से बताएं डॉक्टर साहब।
2: ये तो क्या, जैसे आपने बताया कि पहले आप सीधे फर्स्ट क्लास में स्कूल गए हैं पहली कक्षा में 5 साल की उम्र के बाद में, ये तो एजुकेशन पॉलिसी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो सबके लिए एप्लीकेबल होती है। शुरुआत में जब चेंजेस होते हैं तो शुरुआत में ये स्ट्रेस बढ़ने का कारण होता है, लेकिन जब फ्लो में आ जाते हैं तो वो सबके लिए इक्वल है।
0: नहीं, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया उम्र का, कम उम्र का, क्योंकि प्ले स्कूल में 2.5 साल के बच्चे, 2.5-3 साल के बच्चे जा रहे हैं, जो बच्चे ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं उनको स्कूल भेज दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है बच्चों के भविष्य के लिए या एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए?
2: एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-3 साल के बच्चों के स्कूल भेज देते हैं,
0: हाँ, उन पे इतना भार डालना क्या ठीक रहता है?
2: प्ले स्कूल में जैसा बच्चों को एडजस्ट करना सिखाते हैं, शुरुआत में बच्चा जाएगा स्कूल, हमारे होता है कि पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं, सबके जा रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं जाएगा, तो हमको मन में डर रहता है कि मेरा बच्चा पिछड़
0: पीछे नहीं रह जाए। सही बात,
2: सब बच्चे आगे निकल जाएंगे, मेरा बच्चा पिछड़ जाएगा,
0: ये भी एक मानसिक रोग ही है।
2: तो ये कंपटीशन वाली भावना,
0: जी जी जी जी,
2: हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एक मानसिक तनाव बढ़ाने वाला कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो उम्र का तो अब छोटे बच्चों में है, सब में नहीं होता, कुछ परसेंटेज बच्चे होते हैं जो एडजस्ट नहीं हो पाते इस माहौल में,
0: वही आपसे जानना चाह रहे हैं।
2: तो उन बच्चों में फ्यूचर में जैसे मान ली कुछ बच्चे दबाव महसूस करते हैं, बहुत सारा एजुकेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। मैडम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हम बिल्कुल जैसे मान लो गाँव के बच्चे हैं निकल के आ रहे हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है
0: बिल्कुल,
2: उन बच्चों को उन बहुत सी बार हम आते हैं कि जो हाई क्लास से बच्चे निकल के आते हैं उनके साथ स्कूल में रख देते हैं, बहुत सी बार इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में आ जाते हैं इन बातों को लेकर,
0: जाहिर सी बात है।
2: तो ये हम बच्चों को अभी स्कूल में ड्रेसिंग पैटर्न इसीलिए अगर सेम ड्रेस हो तो बच्चों को ऐसा फील नहीं हो कि कोई मेरे से आगे है, मेरे पास उस तरह के कपड़े नहीं है, ये नहीं है, तो बच्चों में इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स निकल के आता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ये इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, अभी एक अंतराल का समय हुआ है तो रुकते हैं और फिर से श्रोताओं से मुखातिब होंगे।
3: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 88 शक्तिनगर, दशहरा मैदान, कोटा।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड आईवीएफ सेंटर, 12-13 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा। एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध। यहां पर IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों के तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711960223636। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी।
0: श्रोताओं एक बार पुनः आपका

0: स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो, नमस्ते
1: हाँ जी, नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते। नाम बताएं, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी योगेश जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी, हम ये कहते हैं कि आजकल हर व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, सोशल मीडिया तेजी से इस्तेमाल करता है, तो क्या एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्या कि हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं कि ये हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से रहता है, अच्छे पहनता है, अच्छा खाना खाता है, तो क्या ये भी एक मानसिक तनाव या फिर परेशानी का कारण है?
0: बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब,
2: बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के टाइम में जो चल रहा है
0: जी,
2: देख सोशल मीडिया आप अगर लिमिटेडली यूज करते हैं उपयोगी जानकारी के लिए, कुछ उपयोगी जानकारी शेयर करनी है आपको, कुछ उपयोगी जानकारी दिख जाती है, उसको आपके जीवन में अपना लिया आपने, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वहाँ आप कंपटीशन करने लग गए, उसमें सोशल मीडिया पर दूसरे की प्रोफाइल देखी आपने, अब वो आजकल AI जनरेटेड भी हो सकती है। और जो सोशल मीडिया पर लोग पिक्चर डालते हैं, फोटो डालते हैं, वो कुछ अहम पल होते हैं उन लोगों के, घूमने गए उस समय आपने फोटो क्लिक कर लिया बहुत अच्छे मूड में, या कहीं आप किसी शादी समारोह में गए, कोई फंक्शन में गए, अच्छा ड्रेसअप हो गए वहाँ गए, और लोग उनको देख के बहुत सी बार अपने आप को कॉम्पिटिशन में फील करने लग जाते हैं, इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं इन भावना से कि उसका जीवन शैली इतना अच्छा है, वो कितना हंसमुख रहता है।
0: जी जी जी,
2: वो पल सबके जीवन में आते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: लेकिन हमने उन पलों को कैद नहीं किया, उसने कैद करके सोशल मीडिया पर डाल दिया उन्होंने। हम जब एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ता है लोगों का, और उस सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करना भी एक मानसिक बीमारी को होने का कारण बन सकता है।
0: योगेश जी
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये वास्तविक अनुभव होता है इसलिए हमने पूछा।
0: जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल था। और आप और कुछ पूछना चाहते हैं?
1: जी नहीं, बहुत शुक्रिया
0: आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में फोन किया। जी डॉक्टर साहब, हाँ हम बात कर रहे थे कंपटीशन की। आप जैसा कह रहे थे कि स्कूल की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है ताकि बच्चों में एक दूसरे को देख के ये नहीं लगे कि भाई इसके कपड़े ऐसे हैं और मेरे ऐसे हैं, उसी बात को आगे कंटिन्यू करें प्लीज।
2: तो बच्चों को ये भी हमको बताना है, कुछ बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, हो सकता है स्कूल में बच्चों का बुलिंग होती हो, क्लास में 20 बच्चे हैं, कुछ एक दो बच्चे शैतानी भी करते हैं, या तो उन बच्चों को हमको मानसिक तनाव नहीं बढ़े उन बच्चों का, तो उनसे बैठ के बात करने की जरूरत है हमको।
0: जी जी जी,
2: भाई स्कूल नहीं, बहुत से पेरेंट्स कैसे होते हैं, ये तो बहाना बनाता है स्कूल नहीं जाने का, उसको तो पढ़ना ही नहीं है, उस पर बमबारी कर देते हैं सवालों की, कटाक्ष शब्दों की, उसके मन से एक बार बैठ के पूछिए कि क्यों नहीं जाना चाहते, क्या परेशानी है, वो तनाव में क्यों है। आपके बच्चे का व्यवहार पहले से अगर अलग है, थोड़ा बदला भी लगता है, बदला हुआ क्यों व्यवहार है,
0: जी,
2: ये हमको बच्चों से पूछने की जरूरत है। वो कोई समस्या बताए तो उसके तो समस्या को सोल्व करने पे बात करनी अपने को, ताकि मानसिक तनाव नहीं बढ़े, बच्चे आगे जाकर मानसिक रोगों से ग्रसित नहीं हुए, इनसे बचा जा सके उनसे।
0: अच्छा अब बात करते हैं स्कूल की, स्कूल से शुरू हुई, तो परीक्षा का दबाव और करियर की चिंता, क्या ये मानसिक समस्याओं को न्योता दे सकता है या आगे चल के बच्चा मानसिक रोगी हो सकता है, ऐसी कोई संभावना?
2: बिल्कुल, सब में हो ये जरूरी नहीं है। जो बच्चे शुरुआत से स्कूल में,
0: डॉक्टर साहब एक श्रोता है, हेलो
3: नमस्कार
0: नमस्कार, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं और फिर सवाल पूछें।
3: मेरा नाम रामेश्वर राठौड़ है।
0: जी रामेश्वर जी, स्वागत है आपका।
3: गोविंद नगर से बोल रहा हूँ मैं, कोटा गोविंद नगर टकनिया।
0: जी जी जी, स्वागत है, पूछे।
3: ये जो अभी विषय चल रहा है मानसिक रोग का, तो इस मानसिक रोग के विषय में जो संबंधित प्रचारित हूँ,
0: आप थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे क्या? आपकी आवाज बराबर नहीं मिल रही है।
3: आवाज?
0: हाँ जी हाँ जी, बोले।
3: आवाज आई आप सही?
0: हाँ हाँ, बोले आप, सुन रहे।
3: हाँ तो मैं भी इसके लिए डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहता हूँ कि मेरे को इसके लिए क्या औषधि या क्या इसके लिए

0: युवाओं में, जैसे 7th-8th क्लास के बच्चे और फिर करियर ओरिएंटेड बच्चे, किस तरह के लक्षण रहते हैं, कैसे परिवार पहचाने कि अब किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और साथ में ये भी बताएं कि क्या दवाएं ही इलाज है।
1: अभी जैसे मैंने इसके पहले आपने पूछा था स्कूल के बच्चों के बारे में कि माता पिता, तो वो सवाल इससे मिलता जुलता ही है।
0: जी जी जी।
1: कि अगर आपके बच्चे माँ है, पिताजी है, आप बच्चे को पैदा हुए तब से देख रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा है। अब जैसे आपने बताया 7वीं 8वीं बच्चा पहुँच गया है, लगभग उसकी उम्र 12-13-14 साल के आसपास तो आई जाती है, उसका व्यवहार पहले से कितना परिवर्तित हुआ है, क्या बच्चा गुमसुम रहता है, बातें कम करता है पहले की अपेक्षा, या कहीं ऐसा नहीं वो उसको सोशल मीडिया की एडिक्शन हो। आजकल बच्चे, यूं मान लीजिए 5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अगर उसका व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कुछ
0: जी,
1: तो आपको जरूरत है कि उस बच्चे से बैठ के बात करें। आपको लगता है कि इसको मानसिक तनाव में है बच्चा, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, एकाग्रता नहीं बन पा रही उसकी बच्चे की, भूख में उसके परिवर्तन हो गया, नींद में परिवर्तन हो गया, रूटीन डिस्टर्ब हो गया उसका, तो पेशेवर जो चिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक, इसके लिए उनसे आपको एक बार सलाह लेने की आवश्यकता है। दूसरा आपका सवाल था क्या दवाई ही उपचार है, ऐसा नहीं है। हमारा जो रूटीन लाइफ है उसको हम सेट करके भी शुरुआती दिनों में तो बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप काउंसलिंग के माध्यम से भी बीमारी को शुरुआत में ठीक कर सकते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन बीमारी अगर थोड़ा लेवल बढ़ जाए, बीमारी का गंभीरता बढ़ जाती है, कुछ दवाएं आती है, दवाओं के माध्यम से भी ठीक हो जाते हैं, बाद में डॉक्टर की सलाह दवाएं कम करके बंद भी हो जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक अंतराल का समय हुआ तो रुकते हैं।
2: एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध। यहां पर IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों के तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711 9602236306। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड IVF सेंटर, 1213 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट, 5A10 रंगबाड़ी रोड, तलवंडी, कोटा।
4: लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं।
3: जी हाँ, आप भी अपनी मुस्कान और हंसी से अब मोगरे के फूल बिखेर सकते हैं। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं, रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज। डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, मोबाइल 9928085808।
0: श्रोताओ, एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं। ये सजीव फोन इन कार्यक्रम में है और आज इस कार्यक्रम में चर्चा हो रही है विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ते मानसिक रोग, इस विषय पर। और विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजमल मीना जी। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फ़ोन करें 2941142, और इससे पहले एसटीडी कोड कोटा का लगाएं 0744। जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे काउंसलिंग की, दवाओं की, उसी बात को आप आगे बढ़ाएं।
1: बीमारी के जब शुरुआती लक्षण होते हैं,
0: हाँ,
1: और आप पहचान लेते हैं कि जैसे हमारे बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हो गया पहले से, कुछ बच्चे गुमसुम रहने लग जाते हैं, परिवार से कटे कटे रहने लग जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगा नहीं पाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खान पान डिस्टर्ब हो जाता है, रूटीन भूख नहीं लगना, या कुछ बच्चे उग्र हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा बोलना, चिड़चिड़ापन रहना, इस तरह की समस्याएं अगर लगती है बच्चों में आपको, तो एक डॉक्टर से सलाह लें आप। शुरुआत में अगर हम सलाह लेंगे बीमारी के शुरुआती लक्षणों में, माइल्ड सिम्टम जिनको बोलते हैं, तो हम काउंसलिंग के माध्यम से भी बच्चे को ठीक कर सकते हैं जो पेशेंट रोगी हमारे पास आते हैं। बीमारी के लक्षण ज़्यादा बढ़ जाते हैं।

0: लगता है कि काउंसलिंग इसमें कारगर नहीं हो पाएगी, उसको दवा की आवश्यकता है। कुछ दवाएं आती है तो डॉक्टर की सलाह से आप दवा भी ले सकते हैं और दवा लेकर उसकी बीमारी से निजात पा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा यही था कि नींद की कमी या अनियमित दिनचर्या जो होती है उससे भी मानसिक रोग हो सकता है, और आपने उस बात के लिए कहा है कि ये भी एक लक्षण है। अगर आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब है या नींद पूरी नहीं हो रही है, खान पान में भी अगर आपका समय बदल रहा है तो भी एक तरह का तनाव या डिप्रेशन जैसा हो सकता है। अब बात करेंगे भ्रांतियों की, कि मानसिक रोगों से जुड़े भ्रम समाज में है, क्या है और क्यों है?
0: आज भी मानसिक रोगों को लेकर सोसाइटी में बहुत भ्रांतियां हैं। लोग इसको एक तरह से कहते हैं कि बहुत बड़ा स्टिग्मा इसको लेकर है कि ये तो कोई किसी ने कोई पाप कर दिया, उसकी सजा मिल रही है उसे।
1: अच्छा अच्छा, पुराने पिछले जन्म का
0: या इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, कहीं पर चले गए, किसी ने जादू टोना कर दिया इसके ऊपर, या कुछ जैसा डिप्रेशन एंजाइटी है इंसान को,
1: नजर लगना इसमें भ्रांति में है,
0: भ्रांतियों में है।
1: जी जी जी,
0: साइंटिफिकली कहीं प्रूव नहीं
1: कर। डॉक्टर साहब, ये नजर लगने वाली बात को ये के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार जी, मैं महेश शर्मा बोल रहा हूँ कोटा से।
1: जी स्वागत है कार्यक्रम में, पूछे क्या पूछना चाहते हैं?
2: दीदी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो छोटे बच्चों में मानसिक तनाव हो रहा है तो छोटी आयु में ही बच्चों को डालते हैं, दूसरी तीसरी 2-3 साल की उम्र में। पुराने जमाने में मैंने सुना है कि 5 साल का बच्चा प्रथम कक्षा में जाता था और स्वस्थ मस्त रहता था। तो मैं चाहता हूँ कि साइंटिफिकली डॉक्टर साहब ये मुझे भी गाइड करें आपके माध्यम से सबको, कि वास्तव में उम्र क्या है बच्चे की स्कूल डालने की, ताकि वो मानसिक तनाव में ना आए।
1: जी डॉक्टर साहब बताएं।
0: देखिए ये तो क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है बच्चों को कितने साल के बच्चे को स्कूल में डालना है, पॉलिसी बनी, एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि आपको बच्चे को स्कूल में फर्स्ट क्लास में कब डालना है या नर्सरी में प्री स्कूल जो होते हैं आजकल उनमें कब डालना है, वो सबके लिए इक्वल गाइडलाइन है, सेम गाइडलाइन है। लेकिन बच्चे तनाव में नहीं आए, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। कुछ बच्चे तनाव में आ जाते हैं कम उम्र में स्कूल जाने से, वो एडजस्ट नहीं हो पाते। जब स्कूल से बच्चे आए तो माता पिता को बच्चों को समय देना बहुत जरूरत है। आजकल क्या होता है, मदर भी काम वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, परिवार में बच्चों को ध्यान देने वाले नहीं है, तो वो बच्चों मानसिक तनाव में आने की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी जी जी,
0: तो जो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एज क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा गवर्नमेंट ने, वो तो हमको फॉलो करना ही है। नहीं तो अब आप बच्चे को स्कूल नहीं रखेंगे 5 साल तक या 6 साल तक, तो अब वो फर्स्ट क्लास में जब पहली बार बच्चा रखेंगे आप, जब तो उसका उस तरह का एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जिस तरह से और बच्चों का हो रहा है।
1: जी, जी।
0: तो हमको एजुकेशन पॉलिसी को भी फॉलो करते हुए हमारा जो पेरेंट्स की गाइडिंग बच्चों के लिए वो बहुत जरूरी है।
2: सर मैं एजुकेशन में हूँ तो अभी हमारे ये तो है सर कि अगर बच्चा कहीं नहीं पढ़ा है 5 साल का हम डालते हैं तो फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है उसका। पर सवाल मेरा यही है कि आजकल फैशन के दौर में एक दूसरे को पड़ोसी के देख के बच्चे को छोटे बच्चों को डाल देते हैं, और मैं देखता हूँ कि कई बच्चे इतनी जोर से रोते हैं कि श्वास ही रुक जाए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
2: उसको 2-3 साल के बच्चे को पढ़ाने से क्या लाभ डॉक्टर साहब?
1: जी जी जी जी महेश जी, ये बहुत गंभीर समस्या कहूंगी मैं तो इस चीज को, कि एक दूसरे का देखने के बाद अगर आप इतने छोटे बच्चे पे इतना दबाव डाल रहे हैं। बाकी तो विशेषज्ञ हमारे साथ है। जी डॉक्टर साहब बताएं।
0: जैसे सर आपने बताया अभी कि गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी भी कि 5 साल का बच्चा होने के बाद पहली कक्षा में आप उसका एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है कि आप इससे कितने परसेंटेज बच्चे हमारे पास, 2%, 5%, 10% मान लीजिए, वो जो बच्चे अभी स्कूल में आएंगे और जो 3 साल से पहले स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के अपेक्षा उसका एजुकेशन जो लेवल है वो बहुत कम रहेगा। फिर उस बच्चे में हीन भावना आएगी कि जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उसमें 15 बच्चे तो मेरे से बहुत आगे, 5 बच्चे जो नया एडमिशन लिया पहली कक्षा में, उनको 0 सीखने की आवश्यकता है। तो जो एजुकेशन को लेकर उन बच्चों में हीन भावना आएगी, उसको भी एक मानसिक रोग डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है उसके कारण भी। अब ये जो एज का, आप खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आपको पता है कि क्या गाइडलाइन है एडमिशन करवाने की, क्या नहीं है, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में। कहने के ये कारण हो सकता है कुछ बच्चों में कि कम उम्र में बच्चों को रख देते हैं, रखना तो है सबको जो गवर्नमेंट गाइडलाइन बनी उसके अकॉर्डिंग, तो पर कुछ बच्चों में इसके

0: संभावना बढ़ सकती है स्ट्रेस की, तो उन बच्चों को हम घर पे आने के बाद में एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट दें।
1: मुझे तो लगता है दीदी कि जो ये सब पति पत्नी काम करते हैं, ये अपना जो है वेट उधर ट्रांसफर कर देते कि जा उधर टेंशन दे, नहीं तो जॉइंट फैमिली में मैं हूँ, हमारे बच्चे घर में ही सीख जाते हैं, 5 साल के बच्चे तक तो मतलब जो फर्स्ट क्लास का सिलेबस है वो जॉइंट फैमिली में हो जाया करता था, बच्चा अनार वाला आम वाला भी सीख जाया करता था,
2: घर में ही सीख लेते हैं। सही कह रहे हैं आप। हाँ।
1: आपके लिए फैशन होगी तो मैंने इसीलिए निवेदन किया था कि डॉक्टर साहब के माध्यम से अगर ये विषय जाएगा तो लोग समझेंगे वैज्ञानिक तथ्य है
2: जी,
1: तो उसको एडॉप्ट करेंगे।
2: जी जी जी जी जी
1: जी
2: जी, बहुत अच्छा अच्छा सवाल आपने पूछा महेश जी, और ये एक सवाल के ये परेशानी ही है पेरेंट्स के लिए भी और आप जैसे लोगों के लिए जो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं या आप जो भी कार्यभार आपके पास है अभी, तो अब ये जो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गाइडलाइन है तो बच्चों को एडमिशन कराना भी ज़रूरी है, बच्चा पीछे रह जाएगा, तो पेरेंट्स के लिए भी एक परेशानी है। दूसरा कि बच्चों की पहली शिक्षिका जो होती है वो माँ को कहा जाता था, लेकिन आजकल जो है माताएं वर्किंग ज्यादा हैं तो वो ज्यादा समय नहीं दे पाती हैं बच्चों को, तो वो भी एक कारण है कि स्कूल में भेज दिया, वहां पढ़ लेगा बच्चा, तो बहुत सारी चीजें अब क्या करें, समय की मांग है महेश जी। और जी जी जी
1: बिल्कुल दीदी सही कह रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी बहुत सही जवाब दिया है।
2: जी जी
1: आभारी हूँ, आपने मेरी बात को सुना रखा।
2: जी जी जी हम भी आपके आभारी हैं, आप बहुत ध्यान से प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा सवाल।
1: मैं डेली सुनता हूँ दीदी, योग करते हुए डेली सुनता हूँ।
2: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़ने के लिए भी बहुत धन्यवाद और सुनने के लिए भी बहुत धन्यवाद। जी जी जी डॉक्टर साहब, हम भ्रांतियों की बात कर रहे थे, भ्रम भ्रांति,
0: तो लोगों में भ्रांतियाँ होती है, किसी को मानसिक रोग हो गया तो ये तो बड़े ऐसे अनयूजुअल शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए उन बच्चों के बारे में, और लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि अगर डॉक्टर को जाएंगे पास जाएंगे तो नींद की दवाई देते सिर्फ इनसे, उससे मरीज सोता रहता है
2: सही,
0: जबकि ऐसा नहीं है। कुछ हाँ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि शुरुआत में उनसे थोड़ी नींद आती है लेकिन धीरे धीरे बॉडी में सेट हो जाती है।
2: जी, जी, जी।
0: आप डॉक्टर की सलाह ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि एक बार मानसिक रोगी बीमारी चले गई जीवन भर ही दवाएं चलेगी, जबकि ऐसा नहीं
2: होता है।
0: डॉक्टर की सलाह से आप दवा लेंगे तो टाइम से दवाएं बंद होने की संभावना भी रहती है।
2: एक श्रोता ले लेते हैं क्योंकि अब प्रोग्राम समाप्ति की ओर। हेलो
3: नमस्कार।
2: नमस्कार, जल्दी से नाम और जगह बताएं और जल्दी से सवाल भी पूछ लें।
3: नहीं राजमल जी नमस्कार, मैं प्रताप बोल रहा हूँ साई समिति से, और बस सवाल ये, अब तो समय कम बचा बोलते
2: जी, जी, जी,
3: डिप्रेशन एंजाइटी और ओसीडी में अगर डिफरेंस थोड़ा बोल दें तो बढ़िया रहेगा।
2: जी जी जी आप रेडियो पर सुने प्लीज।
3: जी
2: थैंक यू जी डॉक्टर।
0: प्रताप जी डिप्रेशन एंजाइटी और ओसीडी ये मिलती जुलती बीमारियां हैं मानसिक रोगों में। डिप्रेशन में तो इंसान को क्या होता है कि जैसे उसका काम मन नहीं लगना, उदासी बने रहना, काम की इच्छा नहीं होना, इरिटेट होना, ये इस तरह की समस्याएं डिप्रेशन में आती है। और एंजाइटी जो होती है उसमें क्या होता है, मरीज को घबराहट, बेचैनी होना, सुनपन लगना, उसमें भी चिड़चिड़ापन हो सकता है, एकाग्रता कम रहती है, ये हो गया डिप्रेशन और एंजाइटी के मोटे मोटे लक्षण। ओसीडी का आपने पूछा, ओसीडी होती है जैसे रिपीटेडली कोई एक्टिविटी करना जो हमारे दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि कोई बार बार हाथ धो रहा है, उसको लगता है कि एक बार मेरे हाथ साफ नहीं हुए, 10 मिनट तक रगड़े जा रहा हाथों को, घर की सफाई एक बार अच्छे से हो गई, कुछ महिलाएं होती 5-5 बार पोछा लगा रही है फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही उस बात को लेकर, तो कोई मेंटल एक्टिव हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं जो बार बार परेशान कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो रही है, तो ओसीडी में इस तरह के लक्षण आते हैं।
2: जी प्रताप जी आपके सवाल का जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब एक अंतराल के लिए रुकते हैं।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट 5A10 रंगबाड़ी रोड तलवंडी कोटा। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं। रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज, डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। मोबाइल 9928085808।
2: श्रोताओं कार्यक्रम का समय हो चुका है समाप्त करने का, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, स्टूडियो में आए, श्रोताओं के लिए आपने समय दिया, आप चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा से भी श्रोताओं को ये संदेश है कि आप दिनचर्या मेंटेन रखें, टाइम से सोए, टाइम से उठे, अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है और आपका मेंटल हेल्थ

0: अच्छा रहेगा तो आपका जीवन और दिनचर्या अच्छी रहेगी। नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अच्छा खान पान का ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं
1: जी,
0: और
1: जी,
0: अपनी दिनचर्या सेट रखें, टाइम से सोए टाइम से उठे
1: जी जी, और जो है कंपटीशन की भावना थोड़ी कम कर ले मन में,
0: कंपटीशन वाली भावना हेल्दी कंपटीशन रखे,
1: हेल्दी कंपटीशन
0: जीएलसी वाला कंपटीशन ना रखे
1: जी जी जी। तो श्रोताओं, विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, कारणों, लक्षणों, उपचार और भ्रांतियों के बारे में डॉक्टर राजमल मीणा जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहेंगे। और श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम का संयोजन किया रामनारायण मीणा जी ने, और तकनीकी सहयोग हमें मिला विनीत कुमार स्नेही जी और नरेंद्र कुमार शर्मा जी का। अब कार्यक्रम हेलो डॉक्टर को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी मैं आपके साथी सीमा। अगले गुरुवार फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर विशेषज्ञ के साथ हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए नमस्कार। श्रोताओं, अब समय है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, जो कि आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पारंपरिक कलात्मक योगासन और लयबद्ध युगल सहित कई विधाएं शामिल होंगी। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में पुरुष और महिला एथलीटों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने इसे जमीन स्तर पर विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक शासन में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन में AI, डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अधिक अपनाने की आवश्यकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कल अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचा

0: अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी में उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए परंपरागत खेती पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। इसमें संबल सखी तथा माई भारत के माध्यम से समाज सेवा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार, अनुभव और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री से साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवम्बर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत देश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अदालत ने दिनेश कुमार को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी की तलाश भी अभी जारी है। दोनों ने परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल किया और उसी के आधार पर 15 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा दी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बरसात हो रही है। बारा में शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज भी चल रहा है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार हवा के साथ कुछ देर झमाझम बरसात हुई।
1: बुधवार रात्रि को मौसम में पुनः परिवर्तन हुआ और गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के आसीन सम्भूगढ़ और गुलाबरा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जन को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश के बाद अब किसान आगामी दिनों खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलिहानों की हकाई जुताई में जुट जाएंगे। लगातार 3 दिन पूर्व हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
0: मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई

0: पर कल भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। पाली में आज से 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पुलिस लाइन हॉकी मैदान पर शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने टीम के टी शर्ट्स का विमोचन किया और मैदान का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 25 टीमें भाग लेंगी। 3 दिन चलने वाली ये स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से होगी। वहीं पाली की निलंजना चौधरी ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर और एफ एम 102 और एफ एम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। और पहला गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म फूल और कांटे से। कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर हैं। गीतकार रानी मलिक और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और लीजिए अब अगला गीत सुनिए फिल्म दिलवाले से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के गीत को धुन दी नदीम श्रवण ने।
6: झंडा संभाल के रखिए, कोई झंडा लहराने के काम आएगा। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और अब अगले गीत की बारी, जिसे हमने लिया है फिल्म जान से। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजें हैं इस फिल्म के लिए। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की आनंद मिलिंद ने। आइए सुनते हैं।

और साथियों, अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपके लिए फिल्म मीरा का मोहन से अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वर हैं। इंदिवर के गीत को धुन दी अरुण पौडवाल ने।

तो श्रोताओं, फिल्म मीरा का मोहन के इस युगल गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगण कार्यक्रम सुनबाळी मारी संधि बाण्या के ताई थाकी बाण परम ज्योति काढू छू। घणो घणो राम राम बाण्या। और काय हाल चाल छे? सब मजा में छो न बाण्या? आशा करू छू के ता सब मजा में होगी। बाण्या कार्यक्रम में हर बार कोई ना कोई दिवस रहे छे, कोई ना कोई जानकारी रहे छे। आज जसो दिवस मना रहा छे आपन बाण्या। आज छे मासूम बच्चों के मासूम बच्चों को क्रोध से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि दूसरा का क्रोध या आक्रामकता का शिकार मासूम बच्चा के ताई बचावा के लेख यो दिवस हर साल 4 जून न यो दिवस मनायो जाओ छे। ई दिवस के ताई बण्या घणी बार परिवार में अपन देखा छा के घर का मनक जैसे मम्मी पापा के ताई गुस्सो आ रियो छे तो वो छोटा छोटा बच्चा पर अपनो गुस्सो उतार देव छे। स्कूल में मार साहब के ताई कान गाय घर कोई गुस्सो आ रियो छे, कान गाय लड़ाई लड़ आ गया तो वो छोटा छोटा बच्चा पर गुस्सो उतार दे छे। यहाँ बच्चा को काई दोष छे? ये तो निर्दोष बच्चा छे। कोई भी मनक के ताई गुस्सो आवे छे तो यहाँ छोटा छोटा बच्चा पर वो अपनो गुस्सो उतार देव छे। चाय की दुकान हो, ये मिस्त्री की दुकान हो, ये टिफिन सेंटर कपड़ा की दुकान, ये बाल मजदूर पर वो बाला कई प्रकार का अत्याचार दुर्व्यवहार और क्रोध हिंसा से बचावा के लेकर यो दिवस मनायो जाओ छे। बाण्या आपण देखा छा के दुनिया भर में शारीरिक मानसिक और भावनात्मक शोषण क्रोध और हिंसा का शिकार हो या मासूम बच्चा का दर्द व पीड़ा करता है देखा और स्वीकार करा और यहाँ का अधिकार की रक्षा कर लेकर भी यो दिवस आपण मना रहा छा। बाण्या आज का दिन की स्थापना 19 अगस्त 1982 के धन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने करी थी। शुरुआत में यो 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान पीड़ित हो या बच्चा का दर्द के ताई उजागर करवा के लेकर शुरू करो गयो छो, लेकिन बाद में इको दायरो बढ़ार विश्व स्तर पर बच्चा की खिलाफ वाला हिंसा के ताई रोकवा के लेकर युद्ध शुरू करो। संयुक्त राष्ट्र को लक्ष्य बच्चा पर वाला सभी प्रकार का अत्याचार दुर्व्यवहार और क्रोध हिंसा से मुक्त सुरक्षित माहौल प्रदान करबो च बच्चा का अधिकार और सुरक्षा कर लेकर आपन यो दिवस मना रहा चा। तो बण भाया अपना आस पास भी कोई बच्चा पर दुर्व्यवहार क्रोध हिंसा या कोई अत्याचार हो रो तो आपन ऊपर जरूर ध्यान दिया और वहां बच्चा के ताई सुरक्षित करा और वहां की रक्षा करा। बण कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊंगा और मीठो सो आपन यो लोकगीत सुन लेगा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहनों, आज को प्रोग्राम आपनों थीम पर आधारित है और थीम चे लड़का लड़की एक समान।

बणो और भायाओ असी कोई बात कोई ना जिसो आपन दुखी हुआ। बेटा बेटी कताई एक समान मानो कवच है का बेटा बेटी ईश्वर को उपहार हो चे जे आपन कताई भगवान देव चे और यहाँ कताई एक समान माना यहाँ की बढ़िया देखभाल करा यहाँ ही फड़ावा लिखावा और यहाँ कताई यहाँ का पवा पर खड़ा करा कवच का बेटो तो एक कुलकताई तारच पण बेटी तो तीन कुलकताई तारच पियर सासरो और छोकी पढ़ी लिखी हो तो समाज न भी तार दे चे और खुद का बेटा बेटा ही पढ़ार और वहां को ब्याह शादी हो तो हूँ कुली भी वहां तार देव चे।

बने अपना अपना आस पास देखा छा के बेटा को जन्म हो तो बढ़िया फटाका चलाया जाओ छे, मिठाइया बांटी जाओ छे और घनी खुशियां उत्सव मनायो जाओ छे। और बेटी को जन्म हो तो सारो परिवार को मनक मन के आका मुंडा लटक जाओ छे, घना दुखी हो जाओ छे जैसे घर में पार टूट पड़ो हो तो।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये

0: स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: भण्याओ लड़का और लड़की में कोई अंतर कोई ना, दोनों एक समान छे। दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए और सम्मान मिलनी चाहिए। आपन देखा चाह अपना आसपास समाज का लोगों का मन में लड़का और लड़कियां के बीच में अलग अलग अपेक्षा हो चे, पर असल में तो दोनों की समता बराबरी हो चे। बणम मोताक ताई एक सादी और सच्ची कहानी बताऊ चु, जे अपना और अपना हर घर की हो सकत है। जैसे एक गांव में दो बच्चा चा, आस पड़ोस में रचा एक लड़को और एक लड़की। ये दोनों साथ में ही एक ही स्कूल में एक ही क्लास में शुरू सुई साथ में ही पढ़ा चा। एक लड़का को नाम चो रोहन और लड़की को नाम चो सिया। खेल में भी बराबर सुई सुलेव चा, दोनों हर पढ़ाई में भी खूब मेहनत सु बढ़िया पढ़ाई करा चा। और समय के साथ दोनों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और छो का अंकांशु दोनों को रिजल्ट आयो। गांव में स्कूल में बराबर सु सम्मान हो और समाज का लोगों ने भी दोनों के ताई खूब शाबाशी दी। तो ये छोटी सी कहानी सु यही शिक्षा मिले चे कि बराबरी को सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी चे। बण्या लड़को एक फौजी या सेना में जाओ चे और लड़की डॉक्टर इंजीनियर या कोई भी नौकरी हो, पर लड़का लड़की दोनों की राह अलग अलग हो सकत है, पर कार्य क्षमता तो बराबर ही रहो चे। बेटो तो केवल पढ़ाई लिखाई कर एक छोकी नौकरी कर चे, पर बेटी तो ब्याह के बाद में दूसरा घर में जाओ चे, सारा घर परिवार की जिम्मेदारी भी निभाओ चे। पढ़ी लिखी हो तो वह समाज में और नौकरी भी करा चे और बच्चा बच्चियां को लालन पालन भी करा चे। पति के साथ खंदो सुख खंदो मिलार एक साथ में चाल चो और घर की जिम्मेदारी परिवार की जिम्मेदारी और बेटा बेटियां की जिम्मेदारी भी समानता सु निभाओ चे।

0: जाए हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
2: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
3: ભણ્યા તો એક લંબો અધીરા ધીરા હો વાળો બદલાવ છે, પણ આપણા આસપાસ દેખ રહ્યા છે કે સરામાં તો મા બાપ બદલ રહ્યા છે, રૂઢિવાદિતા ખતમ હોરી જારી છે, ઓર ગામમાં હાલ બી ઘણા મનક છે જો લડક્યા કે તાઈ બારે ન ખડબા દેવ, ઓર વાંકી વિચારધારા થોડી પુરાણી છે। आपन सब मलर कई तरीका सु ई में मदद कर सका चा, सबसे जरूरी चे आपन अपना बालका के ताई शुरुआत सु ई समान शिक्षा और समान अवसर देवा, बना कोई भेदभाव का। बण्या घणी बच्चिया खेल में रुचि रखाण चे तो माता पिता ने मलरवा के ताई मौको देनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए। एक लेकर आपन जागरूकता भी लावा और जागरूकता भी फैलावा। परिवार समाज का मन क्या कि सोच बदल जाओ तो हर बच्चो अपना सपना पूरा कर सकच। हाँ बण्या ये बदलाव कर लेकर जरूरी छे, आपन लड़किया का ताई स्वतंत्रता देवा, वहां का सपना कताई उड़ान देवा, सपना पूरा करबा का सपना दिखावा और समाज में वहां की भूमिका कताई सरावा। और अगर आपना सब मलर ये अपनी सोच कताई बदलंगा तो आग आबहाली पीढ़िया का लेकर एक बराबरी और समान समानता को रास्तो तैयार हो जाओगे।

जानकारी में आज मु ले रही छू केरी को अचार बणा केरी को नाम लेता ही मुंडा में फाणे आ जाओ छे और आवार करिया को सीजन चाल रो छे और यू खच एक दो बरसात हो जाओ ना उनके बाद में करिया को अचार बना लेनी छे आज तो अपने बरसात होगी अब आपन करिया को अचार बना लेवांगा। तो सबसे लोकप्रिय अचार में एक छे यो केरी को अचार और आपन बनाऊंगा 5 किलो करिया को आज अचार। तो रेसिपी में बताऊंगा और था लिख लो कागज पेन ले आओ और लिख लो। अच्छा तो सबको ताई बनाने आवे छे पर कोई कमी रह जाओ तो आप पूरी हो जाओगी। 5 किलो अचार ले लेंगा करिया ले लेंगे आपन और यहाँ का ताई बढ़िया दो लेंगा भली भी दो लिया और फिर बाद में यहाँ का ताई काटिया बाद में भी दूंगा फिर यहाँ का ताई सुखा देंगा और बढ़िया फाका कर लेंगे छोटी छोटी जैसी फाका था अच्छा उसी था कर लीजो और यहाँ का ताई बढ़िया सुखाऊंगा। सूखा बाद में ही यहाँ को अचार आपन बनाऊंगा। आधा किलो सरसों को तेल ले लेंगे और मसाला एक थाली में अपन जमाऊंगा। जैसे सौंप लेंगे 250 ग्राम नमक 100 ग्राम 150 ग्राम मिर्चियाँ पीसी सरसों ले लेंगे 250 ग्राम मेथी दाणो भी 250 ग्राम कलौजी 70 ग्राम अजवाइन 10 ग्राम हल्दी 70 ग्राम और सब ये सामान अपन ले लेंगे और हींग भी अपन ले लेंगे आधी छोटी चम्मच। चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ाऊंगा बढ़िया सूखी कढ़ाई होनी चाहिए जी वो मैं अपने आधा किलो तेल पटक देंगा और एक ताई बढ़िया गरम करेंगे जीरो पटक कर देख लेंगा जीरो चटक जाओ उनके बाद में ही कढ़ाई का ताई अपन नीचे उतार लेंगे और नीचे उतार और इमा ये सारा मसाला आपन पटक देंगे जो आपन ना एक थाली में जमाए जा ये सारा मसाला पटक कर यहाँ बढ़िया मला लेंगे और जो आपना कर सुखाई ची ये बढ़िया सूख गई तो यहाँ का ताई भी आपन ये मसाला में ला रहा ही मला लेंगे और मला और बढ़िया बढ़ने का ताई साफ सुथरी कर लिया सूखी बढ़नी होनी चाहिए और हाथ फेर देख लिया गीली तो कोई ना उनके बाद में यो अचार ठंडो या बाद में आपन इमा भर देंगा और भरिया बाद में आपन एक ताई छे ना एक रात का तो आपन एक ताई हल्को ढक्कन लगा मल देंगा यूं ज्यादा टाइट ढक्कन ना लगानो और उनके बाद में दूसरे दिन श्याम के आपन 2.5 किलो तेल 2 किलो तेल आपन गरम कर लेंगे और उनके ताई बढ़िया ठंडो कर और ये अचार में आपन एक ताई पटक देंगा और फिर बढ़िया बलाई टाइट ढक्कन लगा दिया और जब भी आपने जरूरत पड़े तो आपन परौंठा के साथ पूड़ी के साथ या कहीं आ रहा चा जा रहा चा तो साथ में यात्रा में भी ले जावा आनंद आपने ये अचार को लेंगा और बने या जानकारी कशिक लगी यह भी माई बता दियो और आ तो चालबा को टर्म और जो फिर मलंगा नई नई बात और जानकारियां खिला रहा तो आ तो मु चालू छू राम राम।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। श्रोताओं, आप ये प्रसारण सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और आपने ट्यून किया है FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ

न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं, कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए, वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है, कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?

0: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं. ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं. बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज. ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है. अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं. एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे. फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं. तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल. पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना. अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं. और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलियावर जंग.
1: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल। बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखें।

0: तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते. मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है. शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी है, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में. सो देर आर मैनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं. हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा. वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलाडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं. सो इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल.
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं? ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है. ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं. ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी. ओके, एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं. बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं. प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड.
1: क्या बात है.
0: तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है. आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन. हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं. ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है. अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल. ओके, अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल. तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज. बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है. पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है. बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं. तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है. तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक.
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है.
0: एग्जैक्टली.
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है. यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो.
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी.
1: जी, सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है।

0: है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं. तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था. RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग. एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं. तो ये दोनों चीजें अलग हैं.
1: बिल्कुल. और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं.
0: राइट राइट राइट. हाँ,
1: तो उनके लिए भी
0: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं. एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है. ओके. तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ओके. तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें. क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके. दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प. बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है. तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है. तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इशूज और कंसर्न नहीं आते हैं. पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो

0: बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे. इट कैन बी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम. तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है. तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं. एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में. अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं. उसके पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो. फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं. इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो.
1: बिल्कुल.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स ओके. आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच ओके. तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals okay. तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके. अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है. अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है. ठीक है. अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है. जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ओके एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा. जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटर

0: एक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं ओके वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जांपल अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके बुक इस तरीके से खुलती है. ओके अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है. नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे. प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा.
1: तो
0: हाँ जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो वो जो विजुअल थिंग्स है ओके दैट गोज इन हिज हेड. ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग. आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है. जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है यहाँ ले जाना है. तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: सी आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है राइट एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके कोई भी चीज को समझने के लिए जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच. बट येस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे

0: करूंगी वो मुझे कैसे पता, जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल, जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल।
1: ए दिल है मुश्किल जी, ना ये जी सुनते हैं ये गाना।
2: ए दिल

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज़ मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें आपके पास एक्सेसिबल हैं तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज़ को पार्टिसिपेट करूँ तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज

0: में उपलब्ध है कि नहीं है, ओके। और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं, और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
1: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन, ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में, कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है, ओके। ये कहाँ जाना है, ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर, ओके। तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है। थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइनअप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
1: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड, ओके सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे एंड आई यूज टू फील ये ऐसे ये कुछ अलग है ये क्या है ओके सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री

0: वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल. भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है. वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो, ओके, वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
0: श्वार, श्वार.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना. आई जस्ट लाइक

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी. और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है. जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं. तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें. आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम. दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग. सो थैंक्स टू देम. थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को. थैंक यू सो मच.
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: विविध भारती पर हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग। विविध भारती
1: रंग तरंग।
0: श्रोताओ नमस्कार, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज हमने किया हरिओम शरण की इस गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ, प्रेमांजलि एल्बम से, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं छाया गांगुली की गाई मीराबाई की इस पारंपरिक रचना की ओर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने भक्ति सुधा एल्बम से छाया गांगुली के स्वर में मीराबाई की ये पारंपरिक रचना सुनी, जिसे संगीत से संवारा था संगीतकार जयदेव ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: देव कोहली के बोल थे आनंद राज आनंद का संगीत, शुभा मुद्गल और समुद्र की आवाजों में आप सुन रहे थे ये मोहब्बत है एल्बम का ये गाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

है प्रेम एल्बम से ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था, आवाज और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज का जादू है मोहित चौहान और कायम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों नाज मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बज़्म ख्याल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना और यही थी आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आपने ट्यून किया है FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
2: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई

0: जाती हैं।
1: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ, जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है
0: जी।
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ हाँ।
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती
1: जी।
0: है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे
1: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की
1: जी।
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी
1: जी। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot through the deep. The scoop shot, it gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक

0: सूचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
1: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
2: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ। शाबाश।
3: क्या अभी आपके पास समय होगा?
2: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
1: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
2: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
3: जी वही।
1: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
2: अच्छा।
3: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
2: और
1: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
2: हाँ, बोलो।
3: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
3: 5000 वर्ष पहले?
2: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
1: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
2: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
3: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
2: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
3: अच्छा।
2: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
3: जैसे?
2: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
3: वैदिक समूह?
2: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
3: भरत?
1: भरत नाम तो हमने सुना है।
2: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
3: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
2: हाँ।
3: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
3: अच्छा।
2: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
1: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
2: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
3: वो क्या सर?
2: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिदू या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिदू या हिंदू कहा है,
3: भला ऐसा क्यों?
2: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
3: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं। हाँ,
3: ऐसा कैसे?
2: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
3: ओ।
2: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
3: हिंदू।
2: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
3: तो फिर?
2: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
2: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे विष्णु पुराण,

0: और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: सर आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल,
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो जम्बू का अर्थ होता है जामुन, इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ।
0: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया, वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्राय स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम है, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा
0: हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सब्जी साथ?
0: हाँ सबके साथ।

0: साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
3: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
4: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए

0: आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
3: ओफो तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
2: जी,
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया
2: मुझे? मिल गया।
1: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
3: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
1: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था, दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।

0: भाई भीड़ तो है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
1: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
0: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
1: हाँ, हाँ, यही ठीक रहेगा।
0: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
2: भाई साहब हट जाइए।
1: आ गए यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
0: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
1: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
0: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
1: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
0: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
1: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
0: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
1: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
0: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
1: बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
0: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
1: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
0: अरे अरे अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं और आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ साथ आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब पुनः सुनिए विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

को छू लेने वाले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

तो भाई पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है। प्रतियोगिता में 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योगासन भारत की यह पहल वैश्विक स्तर पर योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों सहित 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत

0: दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली शुरू हुई। सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई। जैम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इन गांवों में कम्युनिटी हॉल के नीचे इन बंकरों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य चयनित गांवों को पक्की सड़कों और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जनाभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी भवनों में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कल इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह में जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई इलाकों में सुबह बरसात हुई। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। वहीं सवाई माधोपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन सिंह की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों के गीत हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आगे लिखा है कि नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी चित्रण बंदिनी, सुचाता, छलिया, अनाड़ी, महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है। और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों, चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का, तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए। क्या

भाई सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर का आगाज हो गया है और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया, फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्मों में उनका संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन साथियों उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आंखों के लिए लिखा है कि अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थी तो यकीनन उनकी आंखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थी जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हमसफर रोक अपनी नजर, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है। इन्होंने बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं गाते रहेंगे, यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहां तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूंगी कि ब्लैक एंड व्हाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था, एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी आंखों की भाषा और ठहराव था वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा आप सब साथी कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन, और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी आवाज और आंखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है। और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारे कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूं। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आंखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। तो एक दूसरे हमारी एक साथी हैं लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने, मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे भाव प्रवण अभिनय, मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार है। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सहज अभिनय

बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और मां बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दी। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थी, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है। तो जी हाँ, वो गाती भी थी। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

भी वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं।

ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म चेहरे के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा।

कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए, में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थी जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भाव भंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नजर और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं, जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरो कर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की मिस सौतन की जटिल भावनाएं, उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना न बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थी और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है, उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थी, उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से मां का नाम ही नहीं ऊंचा किया, उन्होंने

इन भी फिल्मों में अभिनय किया। एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, माँ के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफर के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज नाइस एंड इंडिकेट्स मेनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफर फ्रॉम वंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में, एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे, बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है, ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा। आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के जमाने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियां रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्मांकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत हो उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है कहीं अनाड़ी की नायिका तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो या धर्मेंद्र के साथ एक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो।

या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्मपत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्मपत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो

लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ। जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा। और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल। और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है। और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतजार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए जरूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही है, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ खराब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है, उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदिनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री नूतन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी का विषय है मुलाकातें। दोस्तों, मुलाकातें क्यों जरूरी होती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विचार, भावनाएं और पहचान दूसरों के साथ संबंधों से आकार लेती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती, हाव भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, वे सब मिलकर सच्चा जुड़ाव बनाते हैं। यही वजह है कि आमने सामने की मुलाकातें रिश्तों में जान डालती हैं। मिलने जुलने से रिश्तों में मिठास आती है। इन मुलाकातों का असर मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देता है।

0: खबर।
1: दोस्तों, मुलाकातें हमें सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराती हैं। दुख बांटने से हल्का लगता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। अकेलेपन में इंसान अपने ही विचारों में उलझ सकता है। लोगों से मिलना उस घेरे को तोड़ता है और मन को संतुलन और सुकून देता है। हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। कितनी परेशानियों का हल किसी न किसी के साथ होने से, बात होने से चुटकियों में दूर चली जाती है। एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की तमाम समस्याओं से लड़ने की हिम्मत दे जाती है, जिसमें सही राय और विचारों के आदान प्रदान में स्पष्टता और सच्चाई हो।

दोस्तों, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उनसे मिलने जुलने से हमारी सोच व्यापक होती है, पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखते हैं, जो किताबों से हमेशा नहीं मिल पाती। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय और मौजूदगी चाहिए। साथ बैठना, चाय पीना, खामोशी साझा करना, ये छोटे पल भरोसा बनाते हैं। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं जिनमें नियमित मुलाकातें होती रहती हों। अच्छी मुलाकातें यादें बनाती हैं, सालों बाद भी वही हंसी, वही बातचीत दिल को गर्म रखती है। जिंदगी सिर्फ कामों की सूची नहीं, बल्कि साझा अनुभवों का संग्रह है, और मुलाकातें ही उन्हें जन्म देती हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा।

0: जिसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं।

0: साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना

0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
1: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
2: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
3: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ

0: साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, अगले गाने में भी इन्हीं दोनों आवाजों का जादू है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले। क्या कहता है ये गाना, आइए सुने।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही।
1: अब कहां नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है।

0: होती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
1: और वो छूमंतर हो गया सारा दर्द। क्योंकि देखिए ना, हर किसी की जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं।
0: भले
1: ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
0: बिल्कुल,
1: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
0: किसी ने कुछ कह दिया
1: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई गले से लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर एक जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर, उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी जिंदगी से, अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखे, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
1: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
0: बिल्कुल
1: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना,
0: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था पत्थर कंकड़ उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी, कई लोग झुंड होता था बच्चों का, तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
1: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें
0: खा लिया
1: तो भी हम उसे धोके खा लेते
0: तो
1: थे।
0: कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
1: और भी मीठा
0: होगा और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
1: आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती है,
0: लिख भेजे।
1: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, वजन कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
0: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा वो कोई रो रहा है, लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्य है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन ले, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983

0: काशी में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
1: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
0: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
1: क्या बात है।
0: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी गौरव की बात है।
1: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
0: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
1: और
0: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुनकर।
1: बिल्कुल। और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें

0: तो सोनाली जी के गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था,
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी ये नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाले, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें।
1: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस घुटने तक ही कर दिया।
0: अब तो घुटने तक
1: बस इतना करते हैं, पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है। और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है, विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है कि आप

जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से

0: उसके क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती थी। लेकिन अब वो समय कहाँ है। और अब समय एक गाना सुनाने का,
1: सुनते हैं गीत।

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में. सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है. ममता जी, हमारे
0: लीवर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था.
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे बातें करें और अपना समय दें. हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी है. वो हमारा प्यार स्नेह समय और स्पर्श ही चाहती है.
0: बिल्कुल सही बात है. तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं.

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: वैसे एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेल स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक श्रोता कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीख हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली। तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है। तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन

0: पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना है, छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
1: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
0: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
1: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
0: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
1: क्या बात है भाई,
0: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
1: जी। तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में, ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
0: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब प्यार तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके, छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक बुरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे हालत, स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप।
0: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहां जरूरी है और कहां नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: कहां हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहां और हमें गले,
1: खास तौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई हैं आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी,
0: आम, आम बहुत खास है,
1: कहने को आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में।
1: हाँ।
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइप, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब मुझे तो, काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है, और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो
0: बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है।
1: फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं,
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता है जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे

0: आज आमरस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने
1: तो में। हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा लंगड़ा ये आम हमने खाए हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा। इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खासतौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
0: है, बहुत अच्छा लगता है वो आम, तो उसमें जो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत नहीं,
0: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है।
1: अभी लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर से केसर आम,
0: हाँ
1: बहुत मीठा आ रहा,
0: केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्कशेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
1: बिल्कुल, और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी,
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
0: जी,
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए, वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप
1: पनप जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा बस पूछिए मत, एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत, जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना, हापुस वाह वाह ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है, मगर हापुस जी हाँ सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है, अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता
0: हाँ।
1: था, और लोग बाल्टी पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते,
0: और वो छोटे छोटे चूसने वाले आम थे
1: हाँ,
0: जी,
1: हाँ। और आप तो कह रही कि एक आम दो फाक,
0: अब तो ओ ममता जी उस जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था,
1: उसमें
0: पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना,
1: और उसमें केमिकल नहीं होता
0: हाँ,
1: था कोई भी,
0: केमिकल नहीं,
1: कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
0: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था, अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं, पारिवारिक जुड़ाव। आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हापुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं, और इसके व्यंजन भी जैसे आमरस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे, तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे, था और आम का
0: के यहाँ पे
1: और आम का पना भी बनता था और साथ में गांव में तो आम के आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी

0: हो जाते थे।
1: ओहो,
0: तो ये कितने तरह के आम के कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली।
1: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, हाँ, आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम पापड़,
1: हाँ, आम पापड़ उसमें डाल के उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा जाता है जिसे। तो और बोलिए,
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठकर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गाँव याद आता है। नानी के गाँव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है। जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वार फली, 2 रोटी पर्याप्त और

0: कटोरी आम का रस, हर एक घंटे एक गिलास पानी, क्या बात है।
1: बिल्कुल, दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं
0: जी,
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी, उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है।
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहाँ तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दे, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुवीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज हम मौजूद हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या

0: पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षत मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
0: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
0: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या यह अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लायंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है, जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी

0: इनिशिएटिव का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
1: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
0: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो, ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
1: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे इसको दिखाएंगे।
0: कमांडेंट साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं, और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिए, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के वेट वेस्ट के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज वेस्ट करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?

0: को ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिक कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिक कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
0: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है।
0: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं।
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं।
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है, या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके, जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता। इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न खाली रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है। अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: बस क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: बस हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: एब्सोल्युटली 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से साइकिल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद। मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मूवमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ This is actually a wall of kindness, which means donate what you can, take what you need. मतलब अपनी मर्जी से आप donate कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। Amazing initiative, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस wall of kindness के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें wall of kindness के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद। आज मैं आपको wall of kindness के बारे में परिचित करवाऊंगा। wall of kindness यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें या यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े यहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं। क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के

0: यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है, और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
1: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
0: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं, और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जेई, नीट, सीरियस और एसएसबी, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
1: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
2: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कंप्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है, जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है। जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। यह एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं।
3: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
2: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी, और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।

सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की शाम की सभा में। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे का वक्त है। आइए श्रोताओं, अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम युववाणी।

0: ढलते दिन की खूबसूरत शाम, हल्की हवाओं का एहसास और दिल में कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून।
1: जी हाँ दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेके, जिसका नाम है युववाणी।
0: दोस्तों, एक ऐसा मंच जहाँ बात होती है युवाओं के सपनों की, उनके संघर्ष की, उनकी सोच और उनकी उड़ान की।
1: हर शब्द में होता है मोटिवेशन, हर पल में होती है नई एनर्जी और हर आवाज में छुपा होता है आगे बढ़ने का हौसला।
0: और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मनीषा,
1: और मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम।
0: तो सभी सुनने वालों को हम दोनों की ओर से हंसता खिलखिलाता प्यार भरा नमस्कार।
1: तो दोस्तों, अगले एक घंटे तक हम रहेंगे आपके साथ, लेकर आएंगे शानदार गीत, प्रेरणादायक बातें, मस्ती, जानकारी और पॉजिटिव एनर्जी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन।

0: दोस्तों जिंदगी में सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें सच वही लोग करते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि हर चुनौती को अपनी ताकत बना लेते हैं।
1: तो अगर आपके दिल में भी कोई सपना है, अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये शाम सिर्फ आपके नाम।
0: तो दोस्तों छोड़ दीजिए दिन भर की थकान
1: और जोड़ लीजिए खुद को जोश, संगीत और नई सोच के इस खूबसूरत सफर के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारे सामने आ जाती है।
1: लेकिन दोस्तों, समझदार वही इंसान होता है जो अच्छे समय में भी आने वाली कठिनाइयों के लिए खुद को तैयार रखता है।
0: क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंसान सुख और आराम के समय में इतना कंफर्ट जोन में चला जाता है कि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं या हम कहें कि विपरीत समय आता है तो वह टूट सा जाता है।
1: बिल्कुल। जबकि सच्चाई तो ये है कि जीवन का हर दौर हमें कुछ सिखाने आता है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी धूप तो कभी छाव, कभी जीत तो कभी चुनौतियाँ।
0: बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन दोस्तों, समझदार वही है जो कठिन समय के लिए खुद को तैयार रखे। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि मुश्किलें बताकर नहीं आती, और जो व्यक्ति समय रहते खुद को मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना लेता है वही हर परिस्थिति में टिक पाता है।
1: बिल्कुल। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई छात्र सिर्फ परीक्षा के समय पढ़े तो क्या वो हमेशा सफल हो पाएगा? नहीं ना। सफल वही होता है जो हर समय अपनी मेहनत जारी रखे।
0: बिल्कुल दोस्तों, अगर एक छात्र अच्छे समय में मेहनत करता है तो परीक्षा के कठिन समय में वह आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है। बात करें किसी प्लेयर की, किसी खिलाड़ी की, तो एक खिलाड़ी अभ्यास के दिनों में पसीना बहाता है तभी वह मैदान में जीत हासिल करता है।
1: तो दोस्तों, यदि आपके पास समय है तो सीखिए, जब अवसर है मेहनत कीजिए, जब परिस्थितियां अनुकूल हैं तो खुद को और बेहतर बनाइए।
0: और दोस्तों हमेशा एक बात आप याद रखिए कि कमजोर वक्त नहीं बनाता। तैयारी की कमी इंसान को कमजोर बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमेशा नई नई स्किल सीखते रहिए और रिश्तों को मजबूत बनाइए।
1: बिल्कुल दोस्तों, वक्त अच्छा हो या बुरा निकल ही जाता है, लेकिन हर वक्त अपने में आत्मविश्वास बनाकर रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए।

0: दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आपकी रेडियो दोस्त मनीषा और
1: स्वर्णिम के साथ।
0: दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, और वाकई में सही बात भी है ना स्वर्णिम?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कभी जीवन में हमें सफलता मिलती है तो कभी चुनौती।

दोस्तों एफएम 102.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

दोस्तों कहते हैं कि सपनों की उड़ान सिर्फ हौसलों से नहीं होती, ज्ञान से भी ऊंची होती है। और कार्यक्रम में अब वक्त है उस सेगमेंट का जो आपकी सोच को देगा नई दिशा और आपके ज्ञान में लगाएगा चार चांद। जी हाँ दोस्तों, अब युवाणी कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नॉलेज कॉर्नर सेगमेंट की, जहाँ हर जानकारी होगी खास और हर बात होगी कमाल।

0: आज यानी 4 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित आक्रामकता दिवस मना रही है।
1: दोस्तों, आज का दिन उन लाखों बच्चों के प्रति संवेदना, समर्थन और जागरूकता व्यक्त करने के लिए समर्पित है जो हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, शोषण और अन्य प्रकार की आक्रामक गतिविधियों का शिकार बनते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, बच्चे किसी भी देश और समाज का भविष्य होते हैं। उनके सपने, उनकी मुस्कान और उनकी मासूमियत, यही एक बेहतर कल की नींव रखती है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के अनेक हिस्सों में ऐसे बच्चे हैं जो सुरक्षित और खुशहाल बचपन की बजाय भय, संघर्ष और असुरक्षा के वातावरण में जीवन बिताने को मजबूर हैं।
1: हाँ स्वर्णिम, और कई बार देखने में आता है कि कई बच्चे युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता, घर और स्कूल से दूर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कुछ बच्चों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है तो कुछ को शारीरिक और मानसिक आघात झेलना पड़ता है। ऐसे अनुभव उनके वर्तमान के साथ साथ हम कह सकते हैं कि उनके भविष्य को भी प्रभावित करते हैं।
0: और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया का ध्यान उन बच्चों की ओर आकर्षित करना था जो संघर्ष और आक्रामक कार्रवाइयों के कारण पीड़ा झेल रहे हैं। समय के साथ इस दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि आज भी दुनिया के अनेक क्षेत्रों में बच्चे हिंसा और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और स्वर्णिम, यह दिन हमें केवल पीड़ित बच्चों के बारे में सोचने के लिए नहीं बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, अच्छी शिक्षा, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मान पूर्वक पूर्ण जो जीवन है उसका अधिकार प्राप्त है।
0: ये बात बिल्कुल सही है,
1: और उनको मिलना भी चाहिए।
0: और दोस्तों, ये अधिकार किसी विशेष वर्ग या देश तक सीमित नहीं है, है ना, बिल्कुल दुनिया, बल्कि दुनिया के हर बच्चे के लिए समान रूप से ये महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर बच्चा निडर होकर जी सके, सीख सके और अपने सपनों को साकार कर सके।

0: डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ने का सबसे सुंदर मार्ग योग है। इसी खास विषय पर, योग से स्वास्थ्य सुरक्षा पर, आज हम लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातचीत युवा दिल सेगमेंट में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु खरे, जो बताएंगे कि कैसे योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली की कुंजी है। तो जुड़े रहिए और सुनिए योग से स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर शांतनु खरे जी की ये खास बातचीत।
1: योग हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान बनाने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। इसलिए आज हम लेके आए आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट, जहां हम बात करेंगे शांतनु जी से योग के बारे में।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु खरे है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और मैं 2 साल से रनिंग कर रहा हूं। मैंने कई सारी दौड़ों में हिस्सा भी लिया है और मैं अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और योगा भी करता हूँ। रनिंग या किसी और तरीके से जब आप योगा अपनी जिंदगी में लाते हैं, तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपको पहले नहीं मिला था। कई लोगों को लगता है कि योगा उनकी जिंदगी में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और हम जैसे युवाओं को ये सबसे ज़्यादा लगता है, मगर ये सच से ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। आजकल के युवाओं के बीच में जो हम सबसे ज़्यादा देखते हुए आ रहे हैं, जैसे कि मानसिक थकावट, शरीर में दिक्कत, और जो आजकल के बच्चों में और भी ज़्यादा देखने को मिलता है, मेंटल एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अन्य सही बीमारियाँ। ऐसी बीमारियों के चलते जब युवा परेशान हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, तब इसके कारण उनको कई सारे दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कतें उनकी सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक भी हो सकती हैं और आगे बढ़ के इनकी ज़िंदगी में और भी कोई बड़ा रूप ले सकती। इन सब से हमें पहले ही बच लेने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि तब जब ये बाद में हमको नज़र आए। तो मेरा ये मानना है कि बजाय कि हम बाद में ध्यान दें, हम पहले से ध्यान दे सकते हैं।

0: ताकि जो खर्चा आपको अपने हॉस्पिटल बिल्स पे करना पड़ेगा वो आप अपनी अच्छी जिंदगी पे कर पाएंगे।
1: तो शांतनु जी, आप हमारे दोस्तों को ये बताइए कि हम योगा से हम क्या क्या सीख सकते हैं।
0: योगा से हमको आत्म ध्यान सीखने को मिलता है। जब भी आप अपने मोबाइल पे या दूसरों को अपनी जिंदगी में देखते हैं और लगता है वो आपसे आगे हैं या आपको कुछ और सीखने को मिलता है, तब आप कई बार ये टेंशन ले लेते हैं कि आप उनसे पीछे रह गए हैं और ऐसी कई सारी कमियां निकालते हैं जो कई बार सच भी नहीं होती हैं। इन समय पर आप उन सारे तनाव को अपने अपने ऊपर लेकर के अपने लिए एक बहुत बड़ा कठिन सा समय बिताने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको शांति नहीं मिलती है, बेचैनी होती है और कई सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है अगर आप इसको और लंबे समय तक ले जाएंगे तो। इसी के लिए योगा और प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे कि भ्रामरी योग से हम ये सीख सकते हैं कि हमको ध्यान कैसे एकाग्र करें। इसकी वजह से अगर आप कई सारे काम एक साथ करने के लिए व्यस्त हैं या जूझ रहे हैं, आपको उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक-एक करके काम करने पे ध्यान दे पाएंगे और आप धीमे-धीमे अपने एक नहीं कई सारे काम कर ले जाएंगे एक ही दिन में। भ्रामरी की तरह ऐसे और भी प्राणायाम हैं जिससे हमें मन की शांति मिलती है और हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहता है। हमें टेंशन कम होती है और हम अपने दिमाग को एकाग्र करके सोच भी पाते हैं। दिन में कुछ समय निकाल के अगर हम इसे करते हैं तो हमें डोपामिन डिटॉक्स जैसे फायदे देखने को मिल सकते हैं।
1: तो अब आप हमारे दोस्तों को बताइए कि योग कितने प्रकार के होते हैं।
0: योग को दो भागों में रखा गया है, प्राणायाम और आसन। प्राणायाम सांसों के लिए बनाया गया है, सांसों पे काबू करने के लिए और अच्छे से अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने के लिए। ये हमें मदद करता है अपनी चिंता कम करने में, अपने परेशानियों से छुटकारा दिलाने में, अपने चिंतन और मनन को कम करने में। हमारी इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन की शांति बढ़ती है और हमें बेचैनी कम होती है।
1: शांतनु जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आप हमारे दोस्तों को कुछ आखिरी मैसेज देना चाहते हैं?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि योग और प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपाय कर सकता है और हमें इसका महत्व समझना चाहिए। कभी समय मिले तो इसको करना चाहिए और धीमे धीमे ही सही, लेकिन इसको अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए। जितना समय के साथ आप इसको करेंगे उतने ज़्यादा आपको इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।

0: बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों एफएम 102 103.6 सुन रहे हैं आप, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी, मेरे साथ यानी स्वर्णिम के साथ, और
1: मैं हूँ मनीषा।

0: तो दोस्तों आज नॉलेज कॉर्नर के दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिनका नाम सुनते ही शानदार अभिनय, सादगी और खूबसूरत मुस्कान याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नूतन की।
1: अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज हम इन अभिनेत्री नूतन जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन में यानी कि 4 जून 1936 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ शोभना समर्थ भी अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री थी। ऐसे में नूतन का फिल्मों से जुड़ना तो लगभग तय था, है ना स्वर्णिम?
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उन्होंने अपनी पहचान केवल एक स्टार परिवार की बेटी के रूप में नहीं रखी बल्कि अपनी मेहनत और बेहतरीन अभिनय के दम पर बनाई।
0: नूतन की सबसे खास बात थी कि उनका अभिनय बिल्कुल स्वाभाविक लगता था। वो अपने किरदार को इतनी सहजता से निभाती थी कि दर्शकों को लगता था मानो वो असली जीवन ही देख रहे हो।
1: और एक बात ये भी है उनके बारे में कि नूतन ने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म थी हमारी बेटी और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा।
0: उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दे दी गई। उस दौर में जब फिल्मों में ग्लैमर को ज्यादा महत्व दिया जाता था, नूतन ने अपनी प्रतिभा और अभिनय के बल पर अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में आज तक गिना जाता है।
1: और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने करियर में कई सारे पुरस्कार भी जीते और दर्शकों का भरपूर प्यार भी हासिल किया। 21 फरवरी 1991 को नूतन जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी यादगार फिल्म और शानदार अभिनय उन्हें हमेशा अमर बनाए रखता है।
0: नूतन जी की एक और खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि उनके सारे गानों में एक अलग ही लेवल की सादगी, एक है ना अलग ही एंजॉयमेंट रहता था।
1: बिल्कुल, बात जब गानों की तो उनके गाने कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने से भरी उनकी फिल्में रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़े और उनकी ही फिल्म से कोई गीत दोस्तों को सुनवा दें।
0: जी दोस्तों, तो नूतन जी के बर्थडे पे आज आपके लिए उनकी ही फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों 3 जून को डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: हाल ही में डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि रुद्रम फर्स्ट जो था 2020 में डेवलप की गई थी और ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल थी।
0: साथ ही में दोस्तों 3 जून को भारत सरकार ने सीनियर डिप्लोमेट विपुल को सऊदी अरब यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है।
1: इसी के साथ दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा के बारे में आपको बता दें कि ये विश्व धरोहर में शामिल है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ने ई शॉप लॉन्च किया है। काजीरंगा में ई शॉप लॉन्च करने का उद्देश्य जो है वो भी हम आपको बता देते हैं कि वन संरक्षण को बढ़ावा देना और आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।
0: तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स। अब कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

0: दोस्तों कहते हैं कि हर बड़ा सपना समय मांगता है और हर कठिन रास्ते को आसान बनाता है धैर्य। कभी कभी मंजिल देर से मिलती है, लेकिन जो इंसान धैर्य नहीं छोड़ता वही अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरता है।
1: तो दोस्तों अब सुनिए एक ऐसा प्रेरक प्रसंग जो सिखाएगा कि परिस्थितियां कैसी भी हो अगर धैर्य साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है। पेश है धैर्य की शक्ति से जुड़ा आज का प्रेरक प्रसंग। तो दोस्तों एक दिन स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हुए थे। उनके पास दो अंग्रेज आकर बैठ गए। किसी साधु को फर्स्ट क्लास में देखकर दोनों अंग्रेज अपनी भाषा में साधु संतों की बुराई करने लगे।
0: और वे दोनों साधुओं की लगातार बुराई कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि साधु तो अंग्रेजी जानते ही नहीं।
1: कुछ देर बाद गार्ड आया तो विवेकानंद जी ने उससे अंग्रेजी में बात करने लगे। ये देख दोनों हैरान रह गए। वे समझ गए कि ये स्वामी विवेकानंद है। इसके बाद उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। अंग्रेजों ने पूछा कि आप अंग्रेजी जानते हैं तो अभी तक चुप क्यों बैठे थे?
0: तो इस पर स्वामी जी ने कहा कि जब मेरे सामने मेरी आलोचना हो रही थी तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। दरअसल ऐसी स्थिति में मेरी सहन शक्ति और निखरती।
1: आपके अपने विचार हैं, आपने प्रकट कर दिए। मेरा अपना निर्णय था कि मुझे धैर्य नहीं खोना है तो मैं कुछ बोला नहीं। अगर मैं आप पर गुस्सा हो करता तो नुकसान आपका नहीं बल्कि मेरा होता।
0: बिल्कुल ठीक। कई बार होता ना सुनने में कि हम किसी पर गुस्सा करते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, तो इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। हम खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जब कोई हमारी बुराई करता है तब हमारे धैर्य की असली परीक्षा होती है। कई बार बुरी बातों को सहन करने की शक्ति हमें कई समस्याओं से बचा लेती है। तो हमें अब ये होना चाहिए कि आजकल युवा में देखने को मिलता है ना कि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। धैर्य को धारण करें, बस इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों। और अब स्वर्णिम देखो, स्टूडियो की सुई, घड़ी की सुई जो है टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है और इशारा कर रही है कि आज के कार्यक्रम को यहीं विराम दें। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मनीषा को
1: और स्वर्णिम को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवा साथियों के साथ अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो

0: गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। और कार्यक्रम में पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं टशन फिल्म से उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर के सुरों में। गीत के बोल लिखे कौसर मुनीर ने और धुन बनाई विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये प्यार भरा गीत आपने सुना अरिजीत और श्रेया की आवाजों में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से। गीत के बोल लिखे कुमार ने और संगीत बनाया शारिब तौशी ने। जी हाँ, इसी के साथ अब पेश है आसीस कौर और अरिजीत की आवाजों में केसरी फिल्म का ये गाना, जिसकी धुन बनाई तनिष्क ने और गीत के बोल भी लिखे तनिष्क ने।

श्रोताओं, आप चौपाल कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। शुक्रवार दिनांक 5 जून 2026 को शाम 7 बजे से 7:30 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बागवानी और सब्जी वाली फसलों में कीट नियंत्रण। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कैलाश चंद अहीर। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है STD कोड सहित 0744-294-1142। प्रसारण

0: श्रोताओं, भी आपने सुना विशाल शेखर के संगीत और कुमार के बोलों से सजा सनमपुरी की आवाज में ये गाना फिल्म हसी तो फसी से।
1: आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई है।
2: खुदा भी आसमां से जब जमी

0: होगा।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी का प्रसारण। प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आरटी

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध कराए गए विश्लेषण और एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता। मसौदे पर लोगों से इस महीने की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट में एआई सहायता प्राप्त कार्यों, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सभी अदालती कामकाज को मानव नियंत्रण में रखना अनिवार्य किया गया है। प्रस्तावित मसौदा एआई को निर्णय देने, सजा तय करने, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन करने और कानूनी परिणामों का निर्धारण करने से रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। राज्य में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की साझेदारी करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कल गुजरात और दमन दौरे का कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आज आयोजित सुधार उत्सव में उन्होंने ये बात कही। श्री रिजिजू ने कहा कि तकनीक को अपनाने से मंत्रालयों को लाभार्थियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू की है। आयोग ने इसका सफल उपयोग हाल ही में हुई सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में किया है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने बताया कि इसके तहत आवेदन भरते समय उम्मीदवार की जो फोटो अपलोड की जाती है उसका मिलान कर देखा जाता है कि वही अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निलहानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 1982 में हथकड़ी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री निलहानी ने आग ही आग, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश सहित कई प्रसिद्ध फिल्में बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार

0: आज लॉन्च की गई। फ्लेक्स फ्यूल ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये 20% से लेकर 100% एथेनॉल तक के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की। इस मौके पर श्री पुरी ने फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को देश में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इसका बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने से एथेनॉल आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात की निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत बिजली उत्पादन निगमों की ओर से किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्री नागर ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत तक निर्बाध बिजली पूर्ति करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
1: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं, जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें और वहीं उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्य का 80% काम अब तक पूरा हो चुका है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि देशभर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर कुल 855 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। इस दौरान विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन बनाने और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें आवंटित की गई हैं। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर और कोटा सहित 8 शहरों में चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल हो चुका है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। विश्वास से विकास, सेवा से सुशासन नाम का ये जनसंपर्क अभियान 21 जून तक चलेगा। कार्यक्रम की सहसंयोजक अपूर्वा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहाँ पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व राज्यपाल ने अपने संदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत छायादार पौधे लगाने और उनकी उचित देखभाल करने की अपील की है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और नागरिकों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल मदनलाल शर्मा जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी सहभागिता रहेगी। प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इस मौके पर पाली के जवाई क्षेत्र में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं ब्यावर के टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान

0: चलाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आज देश में आगमन हो गया है। केरलम से मॉनसून ने प्रवेश किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इससे राजस्थान में भी आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे उदयपुर जिले में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं डूंगरपुर के सांबला में ओले भी गिरे। चूरू जिले के बीनासर, सातड़ा और सहला सहित कई गांवों में तेज अंधड़ के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही को छोड़कर बाकी स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में इन्हें पदस्थ किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पूरे महीने में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर बना रहा, वहीं महीने के आखिरी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों ने जिले वासियों को प्रभावित किया। इसी सिलसिले के साथ जून महीने की भी शुरुआत हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन अभी भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बदलते मौसम के बीच जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और सूचीकरण का काम किया जा रहा है। प्रगणक घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से 33 सवालों के जवाब पूछकर सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक बीते दिनों कोटा आए और उन्होंने जनगणना कार्य की प्रगति के संबंध में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जानकारियां वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही डेटा की गुणवत्ता, सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों भूजल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण को लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जनअभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट से की। यह अभियान कल संपन्न होगा। 15 दिन के इस अभियान के दौरान जल संरक्षण और साफ सफाई से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें कलश यात्रा, सरोवर और पीपल पूजन, ग्राम सभाओं का आयोजन, जल संरचनाओं की सफाई, प्रभात फेरियां, साइकिल रैली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 3 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा जिले भर में ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई की गई। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने दिघोद के डूंगरजय स्थित कमल सरोवर में ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ श्रमदान करते हुए घाटों की सफाई की। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिले में 100 से अधिक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जिले की महिला किसान वंदना गौड और किसान राहुल नागर को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगले वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर से नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में

0: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त तथा कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की मानस गांव, रंगपुर, किशनपुरा, तकिया, ताथेड़, आरामपुरा, खेड़ा रामपुर, भीमपुर, जाखोड़ा, अरंडखेड़ा, अरलिया, जागीर, गंदीफली और गोदलिया हीड़ी ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन पर 18 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों सांगोद स्थित अपने निजी आवास पर ईआरसीपी और बिजली विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों और अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रगति, बिजली कनेक्शन और क्षेत्र की विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री ने धुलेट टू लिफ्ट परियोजना से तत्काल कनेक्शन जारी करने को कहा ताकि कनवर क्षेत्र के 14 गांवों को जल्द से जल्द पानी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने देवली लिफ्ट परियोजना से भी शीघ्र पानी देने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मंडीता, कुंदनपुर, विनोद खुर्द और मंडाप गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बीते दिनों युवा आवास प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की। युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार गठित की गई इस कमेटी के साथ कोटा में बन रहे यूथ हॉस्टल के प्रबंधन, रख रखाव सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है, प्रादेशिक समाचार। पहली आज री खास खबरां। सर्वोच्च न्यायालय अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान सू राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुजर ने उम्मीदवार बनाए गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली माए लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत माए लगातार बिजली पुगा बाखातर कोशिश कर रही है। समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम माए लेवन रो मसौदो जारी करियो। इनमाए साफ किनो है कि कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण और एल्गोरिदम फैसला लेबा माथे आधारित नी सकेला। मसौदा माथे लोगानु इन मीनारी 20 तारीख तय सुझाव मांगिया गया है। इन ड्राफ्ट माए एआई सहायता प्राप्त काम, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन री मंजूरी दी गई है। हालांकि इन माए सगड़ा अदालती कामकाज ने मानव नियंत्रण माए राखनो जरूरी करियो गयो है। प्रस्तावित मसौदो एआई ने फैसला लेबा, सजा तय करबा, गवाहारी विश्वसनीयता को आंकलन करबा और कानूनी नतीजा तय करबा सु रोके है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 3 सीटा माथे होबा वाला राज्यसभा चुनाव खातर आपरा 2 प्रत्याशियों रो ऐलान करियो है। पार्टी सतीश पूनिया और अलका गुजर ने आपरो उम्मीदवार बनायो है। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज राजस्थान समेत 5 राज्यां खातर आपरा प्रत्याशियों रो नाम ऐलान करियो है। राज्य माए 3 सीटा माथे राज्यसभा चुनाव वेला इन खातर 8 जून तई नामांकन दाखिल करिया जा सके है। 18 जून ने वोट पड़ेला और उन्हीं दिन नतीजा ऐलान करिया जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला री कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज री आज नवी दिल्ली में मुलाकात हुई। इन दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा

0: निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल समेत दूजा हल्का माए इमदाद बढ़ाबारी संभावना माते विचार करो गयो। पूर्वी हल्कारा सचिव रुद्रेंद्र टंडन मीडिया सु बातचीत माए बताया कि इन बैठक माए ऊर्जा हल्कारी साझेदारी करबा माते खास रूपों चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी रो काल गुजरात और दमन दौरा रो कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कया के शासन व्यवस्था ने चोखो बनाबा और जनहित योजनावा ने चलाबा माए प्रौद्योगिकी महती भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार रा 12 बरस पूरा होबारे मौके नई दिल्ली माए आज राख्या सुधार उत्सव माए या बात की गई। श्री रिजिजू कया के तकनीक ने काम में लेबा सु मंत्रालय रा लाभार्थियों रा जीवन माए बड़ो बदलाव लियाबा माए इमदाद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया ने और सुरक्षित और साफ गोई बढ़ावा खातर फेंस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली शुरू करी गई है। आयोग इंडो सफल इस्तेमाल हाल ही मायवी सिविल सेवा और भारतीय वन सेवारी शुरुआती परीक्षा माय करियो। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार बताया रे इंड्रे तहत आवेदक भर्ती टेम उम्मीदवारी जो फोटो अपलोड करी जावे है उनरो मिलान कर देखो जावे है के उन्हें अभ्यर्थी परीक्षा देबा आयो है। जानिया मानिया फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी आज मुंबई माए देवलोक वह गया। वह 76 बरस रहा। बरस 1982 माए हथकड़ी फिल्मों आपरा कामरी शुरुआत कर बाबाड़ा श्री नेहला ने आगिया शोला और शबनम आंखें दिल तेरा दीवाना और तलाश समेत कई नामजोग फिल्मा बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रा अध्यक्ष भी रिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च करी गई। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल रा मेल सु चाल सके है। ये 20 लेर 100% एथेनॉल ने ईंधन रा रूप माए काम माए ले सके है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली माए इंड्री लॉन्चिंग करी। राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाबारा लगस रहते बिजली उत्पादन निगम रिकानियों करिया गया चोखा प्रदर्शन ने लेर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज जयपुर में प्रेस वार्ता करी। इन दौरान वना प्रदेश में बिजली उत्पादन आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनावा माते विस्तारों चर्चा करी। श्री नागर किसाना ने दिन माए बिजली मुहैया कराबा खातर आबाद की। ऊर्जा मंत्री कया के राज्य सरकार हर घर हर खेत ताई लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश कर रही है।
2: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें, वहीं उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश में सरकारी भवना माथे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा बारा तय लगसरो 80% काम हाल तई पूरो वैग्यो है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज न्यारा मंत्रालय और संस्थानारा एहलकाना सागे बैठक करी। श्री जोशी सोशल मीडिया माते बताया कि देशभर में 53,072 सरकारी भवना माते कुल 855 मेगावाट बूतारी सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसा चलाबा खातर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जरूरी व्यवस्थावा पक्की करबारू काम चल रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में इन बाबत बैठक ली। इन दौरान न्यारा न्यारा शहरा में इलेक्ट्रिक बसा खातर डिपो चार्जिंग स्टेशन बनाबा

0: और दूजा कामा की समीक्षा करी गई। बताई जावे है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान ने 1150 बसा आवंटित करी गई है। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर और कोटा समेत 8 शहरा माए चलाई जावेला। इन बसारो ट्रायल बह चुकियो है। इन खातर जरूरी सुविधा बांत है। तेजियों विकास काम करियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार 12 बरस की उपलब्धियां ने जन जन ताई पुगावा खातर प्रदेश भाजपा रिकानियो राज्य व्यापी अभियान चलायो जावेला। विश्वास सु विकास, सेवा सु सुशासन, नाम रोयो जनसंपर्क अभियान 21 जून तई चालेला। कार्यक्रम री सह संयोजक अपूर्वा सिंह आकाशवाणी ने बतायो कि इन दौरान न्यारी न्यारी गतिविधियां वेला।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े लोगों पर्यावरण मुजब जीवन शैली बना बारी आरज करी। विश्व पर्यावरण दिवस पहली राज्यपाल आपरा संदेश माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तहत छायादार पौधा लगाबा और वारी चोखी देखभाल कर बारी आरज करी। अठीने पर्यावरण संरक्षण ने जन आंदोलन बनाबा और नागरिका ने पौधा लगाबा खातर जाग जगा बारा लगसु कालू हरियालू राजस्थान 2026 अभियान की शुरुआत वैरी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूर्ण इंडी शुरुआत करेला। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान माए होबा वाला इन कार्यक्रम माए जन प्रतिनिधि, पढ़निया, स्वयं सेवी संस्थावा और आम लोग मौजूद रहेला। प्रदेश भर माए विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके कई कार्यक्रम रखा गया। इन मौके पालीरा जवाई हल्का माए खास स्वच्छता कार्यक्रम चलायो जावेला। इन मौके ब्यावरा टूरिस्ट विलेज देवमाली माए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलायो जावेला। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज केरलम सो देश माए आग्यो है। भारत रा मौसम विज्ञान महकमो ने पुष्टि करी है कि आवता 2-3 दिन माए मानसून आगे बढ़ सके है। इनसु राजस्थान माए भी आंधी बारिश हो बारो अंदाजो है। इन बीच राज्य माए आज सो नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वियो है। इनसु उदयपुर जिला माए दोपहर पाछे मे बरसो वठी ने डूंगरपुर रा सांबला माए ओला पड़िया। चूरू जिला रा बिनासर, सातड़ा और सहला समेत कई गांव माए तेज अंधड़ रे पाछे चोखो मे बरसो। मौसम महकमो आज 9 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट बतायो। वठी ने जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही ने छोड़कर बाकी ठोड़ा माथे येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप रा पहला संस्करण की शुरुआत आज अहमदाबाद में भी। 5 दिन रा इन आयोजन में देश दुनिया रा करीब 500 एथलीट भाग ले लिया है। बाड़मेर में आज उत्तर पश्चिमी रेलवे रा पहला वाटर रिसाइकलिंग संयंत्र रो उद्घाटन करियो गयो। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक अमिताभ रेलवे स्टेशन माथे इनरी शुरुआत करी। करीब 2.5 करोड़ रूपया री लागत बढ़िया इन कारखाना रेलवे लीलन री धुलाई माए काम माए लियो गयो पानी दुबारा काम माए लियो जा सकेला। और अब आखिर माए खास खबर एक कर फेरू। सर्वोच्च न्यायालय अदालत माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानियो मुहैया कराया गया विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान। सतीश पुनिया और अलका गुर्जर ने उम्मीदवार बनायो गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नवी दिल्ली माए लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत ताई लगातार बिजली पुगाबा खातर कोशिश करी है। इंडस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। माँ को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के साथ

चौपाल कार्यक्रम सुन वाला संदा किसान बन भाया को आज शाम की चौपाल में रेणुका बना के आडी से घणो घणो स्वागत घणो घणो अभिनंदन और सभी के तारी रेणुका बना के आडी से घणो घणो राम राम और बन भाया का हाल चाल छे। हाँ मौसम तो बदलाव चाल रो उतार चढ़ाव चाल रहे छे। दिन में तो चोको तावड़ो पड़ ले छे, शाम के आधी ढूंढाला जाओ छे, फिर पानी का छाटा पड़ जाओ छे और मौसम से बड़ा ठंडो हो जाओ छे। अच्छो की बात भी चाह अपने असि गर्मिया मर रहे कल कल तो तावड़ो पड़ो जाए, जिम्मे थोड़ी सी ठंडो ठंडो बाहर बाज जाओ जो सौन भी घो लग रात तड़का मुँह उठी ना साढ़ा पांच बजे की जे बीच ना जे पानी बरस तो मिलो मई तो मौसम बदलाव बन भाया वो चल रहा है, लेकिन खेती बाड़ी का काम भी अपने साथ साथ चल रहा है। अरे मौसम का बदलाव में आप देखा चाहे जो तावड़ो पड़े चर फिर कोई ठंडो बाहर बाज जाओ शीत गर्म की तासीर भी आप जाओ चर आप स्वास्थ्य भी खराब हो जाओ चे, तो आपने कहता है लापरवाही न करनी बिल्कुल भी। सा मौसम बदल गयो देखो गर्मी तो वाकिवाए चर गर्मी सो आपन कहता है सुरक्षित रहनो ही रहनो चे, क्योंकि आपन मनक तो फिर भी जाप तो कर लिया चाह रहे हैं अपना जो ढांडा डोर चंद वहां को भी अपनी जाप तो कर रखनो चे, वहां कहता है अपना छाया में बांधा ठंडो पानी पुआवा साथ ही साथ वहां हरे चारो भी खुआवा और वहां को भी स्वास्थ्य को ध्यान रखना बन भाया। घर से बाहर जब भी जावा आप डाटो बांध जावा आके आम चश्मो लगा लिया माता पर टोपी लगा लिया डाटो बांध लिया ठंडा पानी की बोतल लारा ले जावा साथ ही घर सो आप ठंडा पेय पदार्थ जैसे छाछ आँच छ ठंडी तासीर का सामान पी रखना ताकि आपने जो करने लग चावा तो एक आंदो लारा राख लिया अपनी जेब मल लिया उसे भी कह जकड़ने लग और शाम की टाइम ना अपन हल्को भोजन लिया सुपाच्य जो अपनी पच जाओ दलियो खींचड़ी हाँ अपने गाँव में देखो दाना को लपटो बनो चो गुण हल्को रहो चो गुण स्वाद लागे जी भाई जानो तो कोई से ना चावला का बेल बनाओ तो जानो कोई खीर खा रहा है स्वाद लागे चे, तो अपने कहते हैं खान पान को और अपना स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखनो चो बन भाया हो। और अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस आज मना रहे चाहूँ का बारे में अपन बात करेंगे जो दुनिया भर में हिंसा संघर्ष और अत्याचार का शिकार हो वाला मासूम बच्चा की पीड़ा करता है समझवा और वहां का अधिकार की रक्षा करवा को संदेश देवच और यो दंच आक्रामकता का शिकार निर्दोष बच्चा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 4 जून का दिन दिन मनाया जाओ चे बन भाया हो। इनकी शुरुआत सन 1982 में हुई थी और एक उद्देश्य वह बच्चा का प्रति संवेदना व्यक्त करवो चो जो युद्ध आतंकवाद हिंसा शोषण और भी कई प्रकार का अत्याचार का शिकार हो जाओ चो बन भयाओ। बच्चा किसी भी देश को और समाज को भविष्य हो चो और हर बच्चा का तय सुरक्षित वातावरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा और सम्मानजनक जीवन जीवा को अधिकार चो। बच्चा का अधिकार की रक्षा करवो केवल सरकार की कोई ना बल्कि आपने पूरा समाज की जिम्मेदारी छे। आपने हर काम से पल्लो ने झाड़ सका सरकार ने न करो अरे सरकार काय करेगी जब तक जन सहयोग न मिलेगो कोई भी योजना सफल न हो सके तो आप सभी के तहत खड़ो होनी पड़ेगो। आज आप संकल्प लेवा का अपन बच्चा के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा भेदभाव और शोषण को विरोध करेंगे बन भाया हो। एक सुरक्षित और खुशहाल बचपन ही बेहतर भविष्य की नींव रख छ। आओ आप सब मिलकर के एक अच्छा समाज बनावा को प्रयास करा जहाँ बच्चा बना किसी भय या डर के अपना सपना साकार कर सके। और आप देश दुनिया की कई बात करा जी घर आम भी आप घनी बार देखा चाहगा कोई आप माया चे या कोई घर का ऐसा मनक रहते छुरा छुरा का पटपट मारता रहे और कोई तो ऐसी लपड़ाओ थपड़ाओ छुरा छुरा नहीं कबापड़ा चंदा जे थर थर कांप लाग जाओ छोरा छोरी तो यह गलत बात है। अपन बच्चा कहता है प्यार से समझावा तो वो जरूर समझेगा मार बात से छोरा छोरी डीट हो जो वो नकटा हो जाओ को कहें करेगा या गलती भी करेगा तो मार लेगा और कहें करेगा घर वाला तो असि अपन कहता है वहां कहता है प्रेम से समझानी चाहिए और वहां के साथ अपन कहता है एक मित्र रह चंद भाई लो भाई ली अशु व्यवहार रखनी चाहिए अपना छोरा छोरिया के साथ ताकि वो अपन से डर कोई ना बल्कि वहां का मन की जो भी बात है ना वो खुलर अपन कहता है बता दे। अगर बच्चा अपने सामने हर बात खोलोगे ना और अपन बच्चा पर विश्वास करेगा तो यह बात याद रखानो बन भयाओं को अपने विश्वास कभी भी न तोड़ेगा। तो बात चिता अपन कार्यक्रम में और भी करेगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अरब चौपाल में समय से जानकारी को
3: किसान भाइयों खेती में आए दिन नए नए अनुसंधान नए नए नवाचार किसान भाई कर रहे हैं और जो कृषि में अनुसंधान किए जा रहे हैं किसान भाई उनको अपना के ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। आजकल आधुनिक तरीके से जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उनको खेती से अच्छा लाभ मिल रहा है। आज ऐसे युवा प्रगतिशील कृषक को स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो काफी दिनों से अच्छी खेती कर रहे हैं। हाईटेक जो खेती है बागवानी है वो भी कर रहे हैं, पॉली हाउस भी लगा रखा है, तो उनके अनुभव सुनते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस खेती की ओर मन बनाया। आप हैं श्री मेघराज लोधा जी, गांव अलकोदिया तहसील तालेड़ा जिला बूंदी के रहने वाले हैं। श्री मेघराज लोधा जी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम।
4: राम राम सर।
3: मेघराज जी कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है?
4: सर 12th पास हूँ।
3: और आगे अब क्या कर रहे हैं?
4: अभी सर जैसे 2015 से पढ़ाई छोड़ी
3: जी,
4: तो उसके बाद में बाहर खेती में अपन ने देखा कि धान गेहूं का ही एरिया था अपना
3: जी,
4: तो उसमें तो मुझे भविष्य नजर नहीं आया सर, मतलब जो होना चाहिए वो, बाकी काम तो चल ही रहा था घर का। उसके बाद में फिर एक दो विजिट होते हैं अपने हॉर्टिकल्चर के गवर्नमेंट के, तो उनमें ये संरक्षित खेती देखी अपन ने, तो उसके बाद में ये लगा पोली हाउस लगाने का निर्णय लिया मैंने 2016 में।
3: अच्छा,
4: तो एक पोली हाउस लगाया आधे एकड़ का।
3: जैसे भ्रमण पे जाते हैं तो कहीं देखे होंगे पोली हाउस आपने पहले?
4: हाँ सर, महाराष्ट्र बारामती गया था मैं इफ्को के टूर पे
3: जी,
4: इफ्को ने टूर करवाया था तो वहाँ देख के आया था सर।
3: अच्छा, वहाँ क्या ज्यादातर पोली हाउस या ऐसी खेती करते हैं?
4: हाँ सर, संरक्षित खेती कुबे पोली हाउस और ओपन बागवानी भी शानदार तरीके से करते हैं सर।
3: अच्छा, वहाँ की खेती यहाँ की खेती में कितना अंतर मानते हैं आप?
4: सर अंतर तो बहुत है, थोड़ा सा वहाँ का वातावरण सम है सर, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं होता है अपने, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती है,
3: कभी कभी बरसात भी ज्यादा हो जाती है।
4: उस और वहाँ पे सिस्टम थोड़ा मजबूत है, मतलब बना
3: अच्छा,
4: रहता है।
3: वहाँ कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता?
4: ना उतार चढ़ाव, मौसम का ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं।
3: अच्छा, तो वहाँ आप ने मन बना लिया कि हम भी इस प्रकार की खेती करेंगे?
4: हाँ, कम से कम थोड़ा तो करेंगे सर
3: जी।
4: ये बनाया था मैंने 16 में।
3: तो उस समय घर वालों के क्या विचार रहे होंगे?
4: विचार सर साथ नहीं दे रहे थे
3: जी,
4: क्योंकि अचानक मतलब बड़ा सपना देखना कि, और इतना देखो उस परिवार से संपन्न परिवार से नहीं था उस टाइम पे
3: जी,
4: जो अपन ये कर पाए। और जैसे हमने बहुत समझा के मम्मी पापा को
3: जी,
4: और एक लगाने का तो मन बनाया, आधा एकड़ लगाया था, आज 2026 में 7 एकड़ पोले हाउस है सर।
3: अच्छा, तो उद्यान विभाग से या किसी विभाग से कुछ सहयोग मिला?
4: उद्यान विभाग से सर।
3: कितनी लागत लगी है, कितना कुछ अनुदान मिला होगा?
4: 2016 में तो सर 17 लाख कुछ यूनिट कॉस्ट थी
3: जी,
4: और 70% अनुदान मिला था, 5,34,000 मेरे गए
3: जी,
4: फार्मर सेट था मतलब।
3: अच्छा, और अब?
4: अब सर जैसे रेटे बढ़ गई, लोहे पे है, नेट पे है, पेपर पे है, तो सब पे रेटे बढ़ गई, तो अभी फार्मर को कोस्ट 22 लाख के आसपास आ रही है और अनुदान भी कम हुआ है अभी।
3: तो अब आपने ये पॉली हाउस लगा तो लिए, अब इनमें जो खेती करते हैं या फसल उगाते हैं उसकी तकनीकी भी जाननी होती है पहले, के भाई कौन सी फसल उगाएंगे, उसमें कौन कौन से कृषि क्रियाएं किस प्रकार से करेंगे, इसकी भी कहीं प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ली है?
4: हाँ, इसकी भी ट्रेनिंग ली है, एक इफ्को का भी था इसमें
3: जी,
4: और अपना हॉर्टिकल्चर का भी टूर था, और हॉर्टिकल्चर 2-4 महीने में प्रशिक्षण अपने केंद्र पे करवाते हैं हमारे बूंदी में।
3: मेघराज लोधा साहब क्या क्या फसलें उगाते हैं इसमें आप?
4: सर इसमें एक तो खीरा है अपना, सीडलेस खीरा
3: जी,
4: और रेड येलो शिमला मिर्च है
3: जी,
4: और अभी टमाटर का चल रहा है, मतलब चेरी का तो ऐसे बाजार नहीं है यहाँ पे, और जैसे हमारा अभी एक्सप्रेस वे हो गया अपना बॉम्बे का दिल्ली का, तब चेरी का करने की सोच रहे हैं, चेरी टमाटर
3: जी,
4: तो उसमें भी अच्छा

0: प्रॉफिट होगा।
1: अच्छा, बरसात में कहते हैं कि पालक भी अच्छा हो जाता है।
0: सर किया ना पिछले साल, देसी तो होता नहीं है इसमें।
1: जी, तो चौड़ी पत्ती वाला,
0: हाँ चौड़ी पत्ती वाला पालक किया, उसमें 1.5 बीघे का वो एक पोलिया हाउस होगा आधे एकड़ का
1: जी,
0: तो उसमें लगभग 80-90 हजार का पालक बैठ गया था मेरे।
1: कितने दिनों में?
0: 1.5 महीने 2 महीने में।
1: अच्छा, इसमें लागत भी ज्यादा नहीं लगाती हो?
0: 4,000 रुपए की लागत थी सर
1: जी। तो यानी कि संरक्षित खेती करके अब जो बरसात में नहीं होता वो हम पालक पोलिया हाउस में
0: कर सकते हैं सर।
1: और एक कटान ही किया होगा कि कई कटान?
0: 8 कटान की थी सर।
1: अच्छा,
0: और वो बार मेरे साथ वालों ने जो ओपन में लगा रखा था 3 कटान की थी उसने।
1: अच्छा, हाँ। क्योंकि बरसात में कीड़े मकोड़े ज्यादा होते
0: हैं, कीड़े जैसे कभी झड़ लग जाते हैं, बंजड़ बोलते हैं, तो मतलब गल जाता है
1: जी।
0: क्योंकि पानी की तरह तो पानी होता है उसमें, तो
1: जी जी,
0: तो वो पानी पकड़ लेता है और जैसे ब्लाइट भी आ जाती है, बहुत सारी बीमारी आ जाती है
1: जी।
0: और लटों का प्रकोप भी बार ज्यादा होता है।
1: और पोली हाउस में ये नियंत्रण
0: कुछ भी नहीं था सर।
1: अच्छा मेघराज लोधा जी, जैसे आपने खीरा की बात की कि पोली हाउस में खीरा अच्छा हो जाता है, तो जो खीरा हम लगातार उगाएंगे तो इसमें भी कुछ समस्या आती है?
0: समस्या तो सर बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम जैसे बिल्टिंग है बहुत सारा हो जाता है, तो इसके लिए हम सोलर एक्शन करते हैं सर।
1: अच्छा।
0: अभी गर्मी में जैसे पिछले साल जिसमें किया था उसमें इस बार खीरा है हमारे, और जो खाली है उसमें सोलराइजेशन पे डाल रखा है अभी।
1: यानी पर्दे हटा दिए?
0: पर्दे नहीं, मतलब उसको पन्नी से पैक करके पानी भर देते हैं उसमें
1: जी,
0: तो पेपर गर्म होता है तो हीट बनती है।
1: अच्छा,
0: तो उसमें क्या कीटाणु मर जाते हैं।
1: बताते हैं नेमेटोड बहुत ज्यादा हो जाते हैं
0: सोलराइजेशन के बाद में, नहीं आता है सर अपना। अच्छा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है H2O2
1: जी,
0: तो उससे करते हैं सर।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल साफ हो जाता है, फंगस भी दूर हो जाती है, निमेटोड भी दूर हो जाता है सर।
1: लागत कितनी आती होगी इसमें जो सोलराइजेशन या जो वो करते हैं?
0: ज्यादा तो नहीं है सर, आधे एकड़ में खेत के 15,000 रुपए का खर्चा, वो पेपर का ही खर्चा होता है सर।
1: अच्छा।
0: उसको आप 3-4 साल तक काम ले सकते हो,
1: पेपर काम में
0: एक बार की लागत है ये।
1: अच्छा, जो पॉली हाउस में आप खीरा उगाते हैं या मिर्ची उगाते हैं, शिमला मिर्ची या कुछ और, तो क्या जमीन मेड़ों पे उगाते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों में उगाते हैं?
0: नहीं सर, हम बेड बनाते हैं
1: जी,
0: तो बेड पे मल्चिंग डालते हैं सर्दी के टाइम पे, क्योंकि टेम्परेचर मिट्टी का डाउन हो जाता है
1: जी।
0: तो बनाने के लिए सर्दी में तो हम मल्चिंग लगाते हैं
1: जी,
0: ड्रिप अपना उसमें होता ही है
1: जी,
0: बेड ही बनाते हैं सर।
1: अच्छा देखिए, खीरा का बीज बाहर से मंगाना पड़ता होगा?
0: हाँ सर, बाहर से आता है।
1: तो क्या कीमत पड़ती होगी एक पॉली हाउस के बीज के लिए?
0: सर 4 रुपए से 12 रुपए तक है सीड,
1: एक बीज?
0: एक बीज।
1: अच्छा,
0: अब किसान भाई सब अपना अपना रखते हैं सब
1: जी।
0: अभी
1: अच्छा, आपने कहा कि 4 रुपए से 12 रुपए का एक बीज आता है, 4 रुपए का बीज खरीदा, एक ने 12 का बीज खरीदा, कितना उत्पादन में बढ़ोतरी होती है?
0: सर देखो, कुछ तो अपने को करने के ऊपर होता है
1: जी,
0: जितना किसान उसको प्रैक्टिस में रहे तो उतना हो जाता है। बाकी 4 रुपए वाले में उसमें देखो डिफरेंट तो होता है सर, फर्क 40% पैदावार का तो आता ही है सर।
1: यानी जैसा हम बीज बोएंगे वैसी फसल
0: वो है सर, सीड का तो है सही
1: जी। अच्छा देखो मेघराज जी, हर खेती में जोखिम आती है, पॉली हाउस में भी जोखिम आती है, क्योंकि हवा का मौसम का जब प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो वो भी खराब होते हैं। जो फसल खेत में या पॉली हाउस में खड़ी हुई है उसमें जो और कीट रोग भी लगते होंगे, उनके बचाव के लिए क्या करें?
0: सर मैंने 2016-17 में लगाया तो केमिकल पे ज्यादा चलते थे लोग
1: जी,
0: और 3-4 साल तक तो देखो केमिकल का इतना नहीं है, मतलब बाहर अगर 50% 60% डाल रहे हैं तो इसमें 10% 20% डालना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: पर आज टाइम ये हो गया, हमारे प्रैक्टिस में ये है कि पहले केमिकल से कंट्रोल हो जाते थे कोई भी कीट पतंगे
1: जी,
0: आज केमिकल से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उनके साथ में जैसे करंज ऑयल आता है, नीम ऑयल आता है, ऐसे ऑर्गेनिक बेस पे जाना पड़ रहा है, गुड़ छाछ गोमूत्र सब कुछ लेना पड़ रहा है। और वाक्य में ये आने वाले समय की मांग भी है कि जितना देसी भी चलोगे उतना बच के चलोगे।
1: बताते हैं कि सब्जी वाली फसलों में सबसे ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है?
0: बिल्कुल सर,
1: और उनका उपयोग हम बहुत जल्दी करते हैं तो मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता होगा?
0: बहुत ज्यादा होता है सर।
1: तो उसके बचाव के लिए और क्या कुछ मन में किया है कि हम इस प्रकार से करेंगे तो मानव स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा।
0: सर विचार तो किया नहीं, विचार हमारा अपने आप हो गया, क्योंकि जब हम केमिकल डाल रहे थे तो कीट पतंगे मतलब कंट्रोल नहीं हो रही।

0: हमारे। अब इंसेक्ट इतने रेस्टेंस हो गए केमिकल के प्रति कि वो उससे जाते ही नहीं है। तो उसके साथ में जैसे हमने गुड़ गोबर छाछ का इनका अपने जो घर में मेटेरियल है
1: जी
0: उनका किया तो आज कंट्रोल में सब मामला। आने वाले समय में खुद आदमी इसको अपने आप करने लग जाएंगे सर।
1: अच्छा मेघराज जी, अब बात कर रहे हैं कुछ लाभ हानि की। एक पॉली हाउस से कितना कुछ खीरा हो जाता होगा?
0: आधे एकड़ में 20 से 30 टन तक अपन ले सकते हैं।
1: जी
0: 50 टन तक भी ले रखा है लोगों ने आधे एकड़ से।
1: अच्छा
0: एक एकड़ में लोग 50 से 80 टन लेते हैं
1: जी
0: और ये लेना भी चाहिए। 25 टन तक प्रॉफिट है। मतलब आजकल खर्चा इतना हो गया पॉली हाउस में, रेटे खाद की बढ़ गई,
1: जी
0: उधर अपने फर्टिगेशन सब की रेटे बढ़ी हुई है।
1: जी
0: अगर आपका 20-22 टन हो जाता है, 20 का 18 का एवरेज आता है, आ जाता है तो 4-5 लाख का हो ही जाता है।
1: जी
0: तो 4-5 लाख में अपने इसमें खर्चा अपना 1.5 लाख रुपए का तो आता ही है। अगर घर की लेबर है तो अपना 1 लाख रुपए का खर्चा होता ही है।
1: कितने दिनों की फसल मानते हैं?
0: सर सर्दी के सीजन में जो अपना अक्टूबर से अप्रैल का सेशन है तो
1: जी
0: उसमें तो 6 महीने के आसपास ही चल जाती है। और अभी गर्मी वाली 3 महीने की फसल है सर, 3 साढ़े 3।
1: अच्छा, तो मार्केटिंग कैसे कहाँ करते हैं?
0: सर हरियाणा और दिल्ली से अभी अपने सर्दी वाली सीजन में तो,
1: जी
0: और अभी गर्मी में तो लोकली बहुत है अपने कोटा बूंदी,
1: अच्छा, यही खपत हो जाती है?
0: यहाँ पे डिमांड पूरी नहीं हो रही सर हमसे।
1: अच्छा, तो कोटा के आसपास तो बहुत सारे, बूंदी के आसपास बहुत सारे पॉली हाउस हैं।
0: किसी के पानी का इशू है, हमारा जो एरिया है तो 2-3 नदियां आसपास है, उधर बर्दा डैम भी है तो हमारा जो एरिया है तो उसमें पानी अच्छा है। किसी के मतलब पानी भी खा रहा है कुछ है
1: जी जी
0: तो वो करते नहीं है। सर्दी का हो जाता है उनके, पर गर्मी में दिक्कतें हैं
1: जी
0: और भी लेबर की दिक्कत है, टेम्परेचर दिक्कत है तो लोग कम करते हैं।
1: गर्मी के दिनों में पॉली हाउस में काम करने में भी गर्मी लगती होगी?
0: सर लगती है पर इसका कोई एक टाइम, अपन जैसे ऑफिस टाइम होता है लोग 10 बजे जाना है तो जाना है तो
1: जी
0: वैसे इसका टाइम मैनेज करना पड़ता है। 8 बजे से पहले पहले जो काम करना वो फ्री कर दो।
1: तो तापमान को नियंत्रण करने के लिए भी कुछ संयंत्र लगा रखे हैं?
0: हाँ सर, स्प्रिंकलर है ऊपर
1: जी
0: जो दिन भर सोलर से ऑपरेट होते हैं।
1: अच्छा,
0: सोलर
1: यानी सोलर प्लांट भी लगा रखा है?
0: हाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने
1: जी।
0: दी
1: तो वो सोलर प्लांट केवल पॉली हाउस को संचालित करने के लिए कि सिंचाई के लिए?
0: नहीं सिंचाई के लिए भी है, सबके लिए है सिंचाई, वो उसी से कनेक्टेड है। मतलब
1: पॉली हाउस की खेती आर्थिक रूप से कैसी मानते हैं?
0: सर मेहनत तो देखो हर जगह बोलती है
1: जी।
0: पॉली हाउस में भी मतलब जिन जिन्होंने मन लगा के काम किया है, नवाचार किया है, उनके लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है।
1: अच्छा, आगे क्या कुछ नवाचार करने का मन है?
0: तो अपनी खुद की प्रोसेसिंग करने की तैयारी में है। जैसे टमाटर लगाते हैं हम, कभी बाजार डाउन हो जाता है, खीरा करते हैं, खीरे के भी बहुत बनते हैं सर
1: जी।
0: तो इसका भी हम ऐसा देख रहे हैं कि भाई इसका कुछ प्रोसेसिंग हो सके।
1: और भी तो खेती करते होंगे आप?
0: सर धान गेहूं सारा करते हैं ना सर,
1: उसमें भी कुछ नवाचार किए हैं?
0: धान में किया है भी, जैसे पहले ट्रैक्टर से कद्दू बना के करते थे
1: जी,
0: अभी सीधी बुआई की है। जो गेहूं आगे जाके सीजन में अपन गेहूं करते हैं उसमें 2 क्विंटल प्रति बीघा उपज बढ़ी है।
1: गेहूं की उपज ज्यादा कैसे बढ़ी है, इसका क्या कारण मानते?
0: कारण ये है सर, वो जो बार बार ट्रैक्टर उसमें घूमता है, कद्दू बन जाता है उसमें,
1: गदेड़ करते हैं, कीचड़ बनाते हैं
0: तो उसमें मिट्टी लेवल दब जाती है सर, टाइट हो जाती है जमीन, तो वो वापसा कंडीशन में रहती नहीं है। और इसमें जैसा अपन लगाते हैं वैसी की वैसी जमीन पड़ी रहती है, मतलब वापसा कंडीशन अच्छी हो जाती है, ऑक्सीजन बढ़िया लेवल पे रहता है,
1: गेहूं का उत्पादन
0: बढ़ता है।
1: लोधा साहब, आप जैसे मान लीजिए गाय भैंस भी पालते होंगे?
0: सर पाल रखी है।
1: कौन सी नस्ल की है?
0: देसी गिर नस्ल है अपने, किशनगढ़ अजमेर वाली।
1: जी जी, कैसा दूध देती है?
0: सर दूध तो लेवल है, मतलब जैसे 4-5 लीटर है, उस डिमांड में बहुत है अभी।
1: क्या भाव बिक जाता होगा दूध?
0: हमारा डायरेक्टली डेयरी पे जा रहा है, जैसे लोकल भी बिकता है 50-60 रुपए लीटर, घर से चला जाता है सर।
1: आपकी हमारी जो बातचीत सुन रहे श्री मेघराज लोधा साहब, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: सलाह तो यही है सर, खेती में अलग अलग नवाचार करो और कृषि विभाग की जो योजना है उनका फायदा लो, और खेती के साथ साथ मतलब जैसे खेत की मेड़ पे पेड़ लगाना, उसके साथ साथ गाय पालना, भैंस पालना।
1: जो किसान भाई आधुनिक श्री मेघराज लोधा साहब आप स्टूडियो में आए और खेती के पॉली हाउस के अनुभव हमारे किसान भाई बहनों को बताए, किसान भाई बहन सुन के जरूर लाभान्वित होंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
0: राम राम सर।
2: कितनी बढ़िया भेंट वार्ता जी बन भाया हो, और जो प्रगतिशील कृषक चा मेघराज लोधा जी वाने कितनी मेहनत करी और आज कितना प्रगति कर ली वहां की खेती बाड़ी में और कतनो

गीत तो गुणो आछो चो बण भयाओ, बस आपन तो प्रार्थना कर सका चांगे तावड़ा मंदरो पड़ जाओ और जो तो भगवान की मर्जी से जो भी से जो या तो प्रकृति चा अपनी जिसे भी रखाने की उसे अपनी रहनी पड़ेगो। अरे कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पर आप कहते हैं बता दिया काल का कार्यक्रम का बारह में चौपाल कार्यक्रम काल शाम की यानी कि 5 जून शुक्रवार गदन 7 बजे 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय रहो बागवानी और सब्जी वाली फसलों में कीट नियंत्रण। विशेषज्ञ होगा डॉक्टर कैलाश चंद अहिर। तो आप ये सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बातचीत कर सको चो। उनको लेगा मगा टेलीफोन नंबर च 0744 जो कि कोटा का एसटीडी कोड च और 2-941-142 वही जाने पहचाना फोन नंबर। तो प्रसारण समय शुक्रवार शाम की 7 बजे 7:30 बजे तक आप फोन कर सको चो और आपने जो समस्या चो उनको समाधान पा सको चो। अरे चौपाल में टाइम बिल्कुल भी कोई ना, फिर मिलेंगे अगला कार्यक्रम में। आज तो चाला चार इनका बना के तय दे इजाजत। गणो गणो राम राम।

कार्यक्रम चौपाल अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर।

रेखा राव के सुरों में ये खूबसूरत लोक रचना भी आपने सुनी। अब पेश है लोक गायिका सीमा मिश्रा के सुरों में अगला लोकगीत।

श्रोताओं, भी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की सुरीली आवाजों में ये लोकगीत। लीजिए अब सुनिए रेखा राव की मधुर बोलों से सजी अगली लोक रचना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना स्वाति शर्मा और गौरव जैन के सुरों में ये लोक रचना। इस गीत के साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष कलाकार हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी। हाँ, जिनकी आवाज ने भारत की अनेक भाषाओं को एक संगीत में पिरो दिया। ये एक ऐसी आवाज बने जो प्रेम बनकर भी गूंजी, कभी भक्ति बनी, कभी विरह बनी और कभी उत्सव। जी हाँ, आज के दिन 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्म हुआ, जिन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाए और भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। साथ ही

ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो आइए हम भी आनंद लेते हैं इस इतनी सुरीली और मधुर आवाज का और सुनते हैं ये गाना।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की सुरीली आवाज में ये गाना आपने सुना मैंने प्यार किया फिल्म से। गीत के बोल लिखे असद भोपाली ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जी हाँ श्रोताओं, सन 1966 में तेलुगु फिल्म से शुरुआत करने वाले एसपीबी शीघ्र ही दक्षिण भारत की पहचान बन गए। उनकी आवाज में भावनाओं की अद्भुत गहराई थी। वे जिस भी अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता गा रहा हो। और हम सभी ने देखा है सलमान खान की फिल्मों को जिसमें उनके गाने बहुत फेमस हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये खूबसूरत गाना।

एक दूजे के लिए फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सागर फिल्म से जावेद अख्तर का लिखा, आरडी बर्मन की धुन से सजा, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गाना आपने सुना। श्रोताओं, 1990 के दशक में जब एआर रहमान भारतीय संगीत में नई क्रांति ला रहे थे, तब एसपीबी की आवाज ने उनके संगीत को नई ऊंचाइयां दी और फिल्म रोजा का गीत आज भी सदाबहार गीतों में गिना जाता है। जी हाँ, उनकी आवाज में ऐसी ताजगी थी जो आज की पीढ़ी को भी अपनी सी लगती है। तो आइए सुनते हैं रोजा फिल्म का ये खूबसूरत गाना।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में रोजा फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने सुना। लीजिए अब सुनिए हम आपके हैं कौन फिल्म से अगला गीत, जिसके बोल लिखे देव कोहली ने, धुन बनाई राम लक्ष्मण ने और आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन से सजा एक दूजे के लिए फिल्म से एक गीत आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। श्रोताओं, एसपी बाला सुब्रमण्यम इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद भी अत्यंत विनम्र थे। संगीतकारों और गायकों के बीच वे अपनी सरलता, अनुशासन और सहयोगी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। आज भी कलाकार उन्हें महान गायक के रूप में ही नहीं बल्कि एक महान इंसान के रूप में याद करते हैं और आज हम भी उन्हीं के गानों को याद कर उन्हें बहुत प्यार से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, साथ ही उनके गानों को महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये खूबसूरत

साजन फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपने सुना, एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे समीर ने और धुन बनाई नदीम श्रवण ने। लीजिए अब सुनिए मैंने प्यार किया फिल्म से लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में ये गाना। गीत के बोल हैं असद भोपाली के और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या का अगला अंक हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा की।

नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश,

0: स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।

0: इसके क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और

0: विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातों बातों में।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो हम सफर नेहा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस कार्यक्रम में। श्रोताओं कहते हैं कुछ बातें दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंच जाती हैं, कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो बरसों तक याद रह जाती हैं। तो आइए आज की संगीत भरी महफिल में हम बातों बातों में जिंदगी के कुछ खूबसूरत रंग तलाशेंगे और सुनेंगे सदाबहार बॉलीवुड गीत। तो शुरुआत करते हैं कैसे ही गीत से जो जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का संदेश देता है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हम दोनों फिल्म से ये गीत आपने सुना। गीत के बोल साहिर के और धुन जयदेव की। बहुत ही खूबसूरत सोच और अंदाज़ है इस गीत का। वाकई ज़िंदगी में जो मिल जाए उसे खुशी से स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना ही तो जीने की कला है। इसी के लिए शेर अर्ज किया है, गम और खुशी दोनों मेहमान हैं ज़िंदगी के, गम और खुशी दोनों मेहमान हैं ज़िंदगी के, जो मुस्कुरा कर मिल ले वही असली मेज़बान है। जिंदगी की इसी राह में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं, कभी दोस्त बनकर तो कभी हमसफर बनकर। तो लीजिए अब सुनिए ये प्यारा सा गीत।

ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की मधुर आवाज में गाना आपने सुना। गीत के बोल लिखे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने। सचमुच कितनी सादगी और कितनी गहराई है इस गीत में। श्रोताओं, किसी का हमारे ख्यालों में बने रहना ही रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना। रिश्तों की डोर शब्दों से नहीं एहसासों से बंधी होती है, और जब रिश्तों की बात हो तो दोस्ती का जिक्र कैसे ना हो। तो आप सभी दोस्तों के नाम ये खूबसूरत गाना।

शोले फिल्म से मन्ना डे और किशोर कुमार की सुरीली आवाजों में ये गीत आपने सुना। धुन बनाई आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती। दोस्ती वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखे, दोस्ती वो है जो तकलीफ में साथ खड़ी दिखे। जी हाँ दोस्तों, दोस्त वो हैं या अपने, उनके साथ बिताए पल अक्सर यादों में बस जाते हैं, है ना। दोस्तों के साथ बिताए हर पल हमारे लिए अद्भुत होता है, यानी कि हमारी यादों में हमेशा बसा होता है। और जब बात यादों की चली रही है तो सुनते हैं ये बेहद प्यारा सा गीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की सुरीली आवाजों में ये गाना आपने सुना। गीत के बोल लिखे गुलजार ने और धुन बनाई आरडी बर्मन ने। जी हाँ दोस्तों, कुछ गीत सुनकर लगता है जैसे कोई हमारी अपनी कहानी कह रहा हो। जिंदगी में हर रिश्ता मुकम्मल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाकर जरूर जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जो गुजर गया उसे याद रखिए और जो मिल गया उसे आबाद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी की उसी मुस्कुराती राह पर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

खूबसूरत गाना आपने सुना। सच ही तो है ना दोस्तों कि जिंदगी एक सफर है, कभी धूप कभी छांव, कभी जीत तो कभी हार। इसलिए रुकना नहीं है राहों में, मंजिलें हमें खुद बुलाती हैं। और इसी हौसले को सलाम करता है हमारा अगला गाना, तो सुनिए ये खूबसूरत

0: इम्तिहान फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना।

0: बन घट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: श्रोताओं, अब चौपाल कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गुरु शुक्रवार दिनांक 5 जून 2026 को शाम 7 बजे से 7:30 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बागवानी और सब्जी वाली फसलों में कीट नियंत्रण। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कैलाश चंद अहीर। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है एसटीडी कोड सहित 07442941142। प्रसारण का समय पुनः सुन लीजिए, शुक्रवार शाम 7:30 तक। सूचना यहीं समाप्त होती है। श्रोता, हम सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और कार्यक्रम है बातों बातों में। यह श्रोताओं, हौसला इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब उम्मीद साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। उम्मीदों का दिया जलाए रखना, आंधियां खुद रास्ता बदल लेंगी। बिल्कुल। और जब उम्मीद हो तो सपने भी सजने लगते हैं। तो आइए हम भी सजाते हैं खूबसूरत सपने और सुनते हैं

शैलेंद्र का लिखा और एस डी बर्मन के संगीत से सजा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना आपने सुना गाइड फिल्म से। सचमुच सपने ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं और तो कुछ इंतज़ार करते हैं सही समय का। इसीलिए कहते हैं ख्वाब वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। चलिए अब सुनते हैं प्यार और एहसासों से भरा एक सदाबहार गीत।

वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आपने सुना। गीत के बोल लिखे राजा मेहंदी अली खान ने और धुन बनाई मदन मोहन ने। वाकई क्या जादू है इस गीत में। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं, है ना? क्योंकि मुलाकातों का हिसाब नहीं रखा जाता, जो दिल में उतर जाए उसे भुलाया नहीं जाता। और अब पेश है एक ऐसा गीत जो हर दिल को छू जाता है, तो आइए सुनते हैं ये बेहद प्यारा गीत।

मुकेश की आवाज़ में कभी कभी फिल्म से ये गाना आपने सुना, गीत के बोल साहिर के और धुन खय्याम की। सचमुच दोस्तों, पुराने गीतों की बात ही कुछ और है। इनमें इनके जो शब्द हैं वो दिल को छू जाते हैं और धुनें आत्मा तक पहुंच जाती है। इसीलिए कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है, और ऐसा ही एहसासों से भरा है अगला गाना। तो सुनिए ये गाना।

चौदहवीं का चांद फिल्म से गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे शकील बदायूनी ने और धुन बनाई रवि ने। जी हाँ साथियों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना भी जैसे कि एक कला है। खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। इसीलिए हंसते रहिए जनाब, परेशानियाँ तो मुफ्त में जिंदगी में मिलती रहेंगी। और सुनिए ये गाना।

ब्रह्मचारी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने। जी हाँ श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम बातों बातों में यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण, कुछ ही पलों में प्रतीक्षा कीजिए।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। शायद यही तो प्यार है। जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है।

अब राहें अलग नहीं रही। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे, खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ, अपने सारे गिले अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

अज समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के

तेरी मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है, हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

दिल से कोई किसी के ना खेले।

अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कुछ ही पलों में प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को

0: वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on the expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC, Mr. Shah in a social media post said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden

0: World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: तो
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ

0: ये पढ़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
1: जी,
0: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
1: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
1: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं। कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
0: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
0: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें की कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हजार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज।

0: आज हो रहा है, रोज 80 से 90 हजार। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है, 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी, जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है।

0: कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की, और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
1: जी।
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसपे 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें 2 तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ

0: यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो

0: योग
1: जी,
0: वो स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम आधुनिक पद्धति का भी हो
1: जी।
0: और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो। इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं, इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
0: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें,

0: एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेलीमेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेलीमेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेलीमेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं कोरोना के टाइम की, जब कभी

0: याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस. सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
1: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया. एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया. उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है. बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है. अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए. तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है. तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है. हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है. हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है, उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें. इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है. सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया. वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे. काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है. और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं.
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए. तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
1: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है, उनको उपलब्ध किया जाता है. देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है. इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं, किफायती दाम पे मिलती हैं. मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है. बहुत फायदा होता है. अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है. और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है. और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए. और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है, मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए, जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है. तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते. इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है.
0: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है. डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए.
2: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102 FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए